जा बुरा करते हाल, पलक फड़के आए के दिल धड़के, उमर की उठा कड़कती कमा, कातिल अदा जालिम हया।

पावर्ड बाय iPay, बेस्ट रेट नो स्ट्रेस iPay वॉलेट का भरोसा डाउनलोड कीजिए आज ही iPay, द बेस्ट रेमिटेंस रेट इन कतर. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet का भरोसा. Download कीजिए आज ही iPay.

आगे भागूं मैं ये पीछे पीछे आए, कुछ ना देखे कुछ ना सोचे आंखें नीचे आए।

0: मैं क्यों बेचैन रहता हूँ,
1: क्यों
0: मेरी इस बेकरारी की वजह क्या है, बता दूँ क्या
1: क्या

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana.
2: Gabana.
1: Burga, burga. La vieta la burga.
2: Mirchi, burga.
3: Hello.
4: से बोल रहे
3: हैं? हाँ जी।
4: मुझे कुछ ऑर्डर करना था, आप लिख लेंगे प्लीज?
3: या
4: और रात के खाने के लिए लिख लीजिए प्लीज।
3: हाँ, बोलिए।
4: 2.5 किलो अरहर दाल, 3 किलो चना दाल, 3.5 किलो चना कबूली, 4 किलो चना डॉलर प्रीमियम, 1 बेसन। हाँ,
3: एक्चुअली में 2.5 किलो वगैरह हमारे यहाँ नहीं होता, 2-2 किलो में, 1-1 किलो में पैकिंग होती है, तो 2 kg।
4: अब आपको ये मैं क्या, वो 2.5 किलो ही खाते हैं, मैं क्या करूँ?
3: Oh my God.
4: मेरे हस्बैंड हैं, डाइट उनकी है, आपको क्या प्रॉब्लम है?
3: नहीं मैम, प्रॉब्लम
4: 4 किलो चना दाल, 4 किलो चना कबूली,
3: चना दाल, चना कबूली। एरोप्लेन भेजूं?
4: एरोप्लेन भेजिए, हमें जाना ना हनीमून पे।
3: सॉरी मैम, मैं ये बोल रहा हूँ 5 kg एरोप्लेन राइट मैम, सॉरी।
4: एक सेकेंड, कभी फोन आ रहा है। स्वीट हार्ट आई लव यू, ऑर्डर दे रही हूँ। तुम आओ तो सही ना। No, I will be waiting for you, my sweetheart, my Janu.
3: Hello.
4: One second, मेरे हस्बैंड से बात चल रही है, one second. कब आओगे रात में? अच्छा सुनो, मेरे लिए रात में वो लेके आना ना, वही वही कुछ पूछे कुछ पूछे. Okay, sweetheart, bye. हाँ लिखिए, 3 प्लेट गोलगप्पे.
3: गोलगप्पे नहीं होते मैम
4: हमारे, चकोर दे दीजिए। गोलगप्पे नहीं है, चकोर वाले दे दीजिए।
3: है नहीं मैम हमारे यहाँ,
4: लंबे वाले
3: नहीं है वो।
4: अच्छा लास्ट फाइनली, मैं और मेरे हस्बैंड जो बहुत शौक से खाते हैं,
3: क्या खाते हैं
4: मैम? मुर्गा
3: मैम, वो भी नहीं है।
4: आपको ये नहीं मालूम दिल्ली में सबसे अच्छा मुर्गा कहाँ बनता है?
3: मैम ये हमें नहीं
4: पता। हमें मालूम है, मैं बताऊँ आपको?
3: हाँ जी मैम बताइए।
5: रेडियो मिर्ची, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं छोटा सा मजाक कर रहा था आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया भाई साहब हमने।
3: आपकी आवाज में काफी
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
3: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
6: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
2: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
7: खूब मिलेगा, मिलेगा।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: दीवाना है।
1: Only imagine the kind of romantic you are. आप सुन रहे हैं मिर्ची It's Hot.
2: Bollywood Bol Dal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bol Dal.
3: Only on Mirchi, It's Hot.

पावर्ड बाय iPay, बेस्ट रेट नो स्ट्रेस iPay वॉलेट का भरोसा डाउनलोड कीजिए आज ही iPay, द बेस्ट रेमिटेंस रेट इन कतर। Let's do the

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
0: सर वो क्या है ना, अगले हफ्ते मेरी शादी होने वाली है, तो मुझे आप बताओ ना कि वो सुहागरात में कौन सा परफ्यूम लगा के जाओ।
1: अरे शादी के दिन तो ना के जा।
2: रख, रख।

0: Milci. Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga. Hello.
2: Is that Sanjeev?
1: Yeah, I'm speaking.
2: Hi Sanjeev, I am Atul calling from...
1: Okay.
2: संजीव आपने 3 राउंड क्लियर कर लिए हैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के लिए. ये आपका फाइनल राउंड है जिसमें हम कैंडिडेट के पेशेंस चेक करते हैं, उसमें कितने पेशेंस है, कितना इत्मीनान है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि इस तरह की जॉब है. तो आपको लगता है कि आप में पेशेंस हैं सारे?
1: पेशेंस तो है, मैंने जो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया हुआ उसमें भी मेंशन है ये चीज.
2: ओके.
1: कई तरह के कस्टमर्स होते हैं, उनको सेटिस्फाइड करना ही हमारा काम है.
2: कितने साल जॉब करी है आपने इससे पहले?
1: मैंने 2 साल काम किया एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव.
3: चुप कर. 2 साल काम किया एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव.
1: सॉरी सर.
2: कैरी ऑन रखिए, आप बताइए मुझे अपने बारे में. ये मैं आपके पेशेंट चेक कर रहा हूँ. हाँ बताइए. भड़कता हुआ कस्टमर आता है, कॉल करता है, तो उसको किस तरह हैंडल करते थे?
1: कस्टमर्स हैं, जब मैंने आपको बताया ना, मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है. इस टाइप के कई कस्टमर्स आते थे जिनको हम बहुत ही कूलली, बहुत पेशेंट के साथ उनको सेटिस्फाइड.
3: बकवास बंद कर, बकवास बंद कर. कूलली तू करता था, कूलली दांत अंदर कर.
1: हम करते थे सेटिस्फाइड
3: कर. बकवास बंद कर, बकवास बंद कर.
1: जैसे आप बोल रहे हो ना, ऐसी ज्यादा गुस्सा दिखाते हैं वो लोग.
2: अच्छा, इससे ज्यादा दिखाते. अच्छा मुझे ये बताइए कि मान लीजिए कोई कस्टमर ऐसा है जो कि मान ही नहीं रहा आपकी बात और वो डांटे जा रहा है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए?
1: सर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पहले हमारी बात सुने.
3: शराब
1: बोलते हैं.
3: शराब लोग. शराब. अब टेस्ट तुम्हारा खत्म हो चुका. कोई पेशेंस चेक नहीं कर रहा. अब ये असलियत कह रहा हूँ, तुम्हें बोलने की तमीज है नहीं यार.
1: अभी तक
3: पेशेंस चेक कर रहे, लेकिन वाकई में तुझे तमीज ही नहीं है. मोबाइल के कस्टमर केयर में जॉब करने के लिए कह रहा है करूंगा. मोबाइल पकड़ा कभी हाथ में?
1: बोल
3: के करूंगा. कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनूंगा. कस्टमर इंसान तो बन जा पहले यार. इंसान बना नहीं है.
1: खुद को देखा आपने कभी?
2: संजीव कोई इंटरव्यू की कॉल नहीं है. मुझे पता चला तुमने 3 राउंड दे चुके हो. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बना रहा था.
1: अरे
2: और लेकिन तुम पूरी तरह क्वालिफाई कर गए हो ये राउंड. तुम्हें जॉब मैं दूंगा. तुम मेरे शो में आके बैठो. मुझ पर भी कभी कभी डांट पड़ती है.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: में शी स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
3: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
6: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
7: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: श्रेयस तलपड़े आपकी सबसे पहली हिंदी फिल्म इकबाल थी, लेकिन क्या आपको याद है सबसे पहला गाना आपने कौन सा शूट किया था?
3: एक्चुअली टेलीविजन सीरियल का हमने एक टाइटल सॉन्ग शूट किया था, तो आई थिंक दैट प्रोबब्ली वाज द वन व्हिच वाज माय फर्स्ट सॉन्ग एज सच। मराठी गाना था वो, टाइटल था सीरियल का बेधुंद मना चल लहरी। इट वाज लाइक बेधुंद मना ची लहर लहरी चा होती लाटा लाटा होता कहर किनारा शोधती हजार वाटा।
2: श्रेयस यू नॉट ओनली अ गुड एक्टर, यू आर अ फाइन सिंगर। मुझे लगता है आपको ये वाला ऑप्शन अब एक्सप्लोर करना शुरू कर लेना चाहिए। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: emergency helpline?
1: Hi there, what's up? Tell me.
0: Sir, computer में virus घुस गया है, क्या करूं?
1: Oh my god, आज ही डॉक्टर के पास लेके जा और वैक्सीन दिला.
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा.

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot. Mirchi. Fresh Maal.
1: High voltage beats और unstoppable groove के साथ सुनो माशुका

0: गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6, 89.6,
1: it's hot.

0: Milci. Iscabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burca, burca. Na vidva la burca. Milci, burca.
1: हेलो
2: हेलो नवनीत
1: yeah.
2: नवनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ।
1: हाय नवेद,
2: क्या हाल चाल है?
1: बढ़िया है।
2: आपने मैसेज किया था अपने फादर का मुर्गा बनवाने के लिए।
1: हाँ हाँ हाँ, बन गया क्या?
2: यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुमने किस आदमी का नंबर दिया यार मुझे?
1: हाँ?
2: सोच समझ के नंबर देते हो नहीं देते हो? मैंने उनको फोन किया, वो मुझ पे भड़क रहे हैं यार शुरू में ही।
1: या, मैंने तो अपने पापा का ही नंबर दिया।
2: पापा का नंबर, नाम क्या है यार पापा का?
1: मिस्टर दिलीप।
2: उनसे ही मेरी बात हुई है यार। मैंने माना, मजाक अपनी जगह है, मुर्गा बनाता हूँ, मैं भी हंसता हूँ, तुम्हें भी हंसाता हूँ, लेकिन यार ये थोड़ी उसका नाजायज फायदा उठा लो तुम।
1: मैं क्या कुछ गलत
2: बोल दिया यार? मैं मतलब यहाँ पे इसलिए आता हूँ कि मैं गालियाँ सुनूँ यार?
1: अब ऐसी बात क्या हो गई?
2: ऐसी बात क्या हो गई? अपने फादर से पूछो यार जाके। नहीं, अपने फादर से क्यों नहीं पूछते तुम जाके?
1: अब मैं क्या
2: पूछूं यार? तुम्हें पहले कहना चाहिए था मुझसे कि उन्हें गुस्सा आता है, वो ज्यादा भड़क जाते हैं यार।
1: अब गुस्सा तो सभी को आता है, ठीक से बात कर ले।
2: तुम मुझे बताओगे कि मैं कैसे बात कर लेता यार? नवनीत कमॉन यार, ऐसे नहीं होता है। मैंने माना कि चलो एक शो है, मुर्गा बनाते हैं उसमें, ये थोड़ी यार क्या तुम उठा के किसी का भी नंबर दे दो, किसी का भी मुर्गा बनवा लो।
1: अब कुछ यानी कुछ ज्यादा पापा ने बोल दिया तो तरफ से मैं माफी
2: मांगने से क्या होता है यार? ऐसी मैं माफिया मांग रहा था उनसे, मैंने माफी मांगी है 50, वो नहीं मान रहे। तुमने यार पता नहीं उठा के क्या समझ रखा है मुझे।
1: अब आपने बोला कि मुर्गा बनाना, SMS कर दो, मैंने कर दिया।
2: तुम मुझे क्या पता था यार तुम अपने ऐसे फादर का नंबर दे दोगे यार?
1: ऐसे फादर क्या, मेरे तो एक ही फादर है, मैं ढूंढ के लाऊंगा।
2: अरे तो यार अब तुम उल्टे मुझसे बात कर रहे हो। एक तो पहले बाप की सुनिए, अब मैं बेटे की सुन लो। यार तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया क्या?
1: मेरा खराब नहीं हो गया, मुझे लग रहा है आप ही का थोड़ा हो गया।
2: इस वक्त तुम्हारा ही मुर्गा बन रहा है, मेरी तुम्हारी फादर से अभी तक बात भी नहीं। मैंने माफी मांगी है 50, वो नहीं मान रहे। तुमने यार पता नहीं उठा के क्या समझ रखा है मुझे।
1: अब मैंने क्या, आपने बोला कि मुर्गा बनाना, SMS कर दो, मैंने कर दिया।
2: तुम मुझे क्या पता था यार तुम अपने ऐसे फादर का नंबर दे दोगे यार?
1: ऐसे फादर क्या, मेरे तो एक ही फादर है, मैं ढूंढ के लाऊंगा।
2: अरे तो यार अब तुम उल्टे मुझसे बात कर रहे हो। एक तो पहले बाप की सुनिए, अब मैं बेटे की सुन लो। यार तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया क्या?
1: मेरा खराब नहीं हो गया, मुझे लग रहा है आप ही का थोड़ा हो गया।
2: इस वक्त तुम्हारा ही मुर्गा बन रहा है।

0: चलो एक बार प्यार से मेरे साथ उनकी तरफ से बोल दो
1: कुकड़ू कू।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
3: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
6: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल,
7: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
8: कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची 1 इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: बादशाह, आपने इतने गाने बनाए, इतने गाने कंपोज किए, सबसे पहला रैप आपने किस पे लिखा था?
2: जो मैथ्स के टीचर है उन पे रैप लिखा था। टीचर अच्छे नहीं थे, क्योंकि एक जैसे टीचर होते हैं वैसे वो थे नहीं, तो मैंने उन पे रैप लिखा जो काफी मशहूर हो गया। दैट वाज माय फर्स्ट। दिक्कत तब हुई जब वो रैप उन्होंने ही पढ़ लिया, उसके बाद मेरा एजुकेशन पे से विश्वास ही उठ गया।
1: 2+2=4, बादशाह गिव अस मोर, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्ड, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
0: मेरे बॉस की सारी गलती की ओनरशिप हर बार मुझे ही लेनी पड़ती है, क्या करूं?
1: अरे तो बॉस को बोल दो कि ये कंपनी भी उनकी एक गलती है।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस।
3: मिर्ची घड़ी में बज रहे हैं 10, आप सुन रहे हैं मिर्ची वन कतर।

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vidva la burka.
1: Mirchi, burka. Hello.
2: Hello, Sunil ji.
1: Haan ji.
2: Sunil ji, पेट्रोल पंप से बोल रहा हूँ सर. कंग्रेचुलेशंस, आप लकी विनर हैं.
1: किस चीज के जी सर?
2: सर आपका 20 लीटर पेट्रोल निकला है बिल्कुल फ्री. मैं तो सोच रहा था बड़े खुश हो जाएंगे क्योंकि पेट्रोल के
1: यार, बहुत बढ़िया.
2: तो सर ये आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको फिल कराना होगा, भरवाना होगा अपनी गाड़ी में.
1: ठीक है. अच्छा एक बात तो बताइए सर जी.
2: हाँ जी.
1: इसके क्या पैसे ऐसे देने पड़ेंगे कुछ?
2: नहीं सर, पैसे कोई नहीं, कोई पैसा नहीं.
1: कंडीशन वगैरह?
2: नहीं सर, कोई कंडीशन नहीं है. पुराने ग्राहक हैं आप, ऐसे कैसे कंडीशन रख लेंगे?
1: तो ठीक है, ग्राहक पुराने ग्राहक को आदमी थोड़ा अपने समझ के कहते हैं ना, अपने कोई ज्यादा.
2: बस सर बिल्कुल फ्री है, पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे. एक छोटा सा काम करना पड़ेगा.
1: क्या?
2: पुराना लाइए, नया ले जाइए.
1: क्या भैया, पुराना क्या लाऊं भाई?
2: पुराना पेट्रोल लाओ, नया ले जाओ सर, बस यही है. और वो भी आप ही का निकला.
1: क्या बात हुई, पुराना कहाँ से लाऊं?
2: सर पुराना जो आपने
1: पुराना हो तो जल के वो खत्म कर दिया हो
2: तो सर जो आपने पुराना यूज किया होगा वो तो लाना पड़ेगा ना आपको.
1: धुआं मैं कहाँ से इकट्ठा करूँ?
2: पहले तो आप बड़े दांत फाड़ रहे थे जब मैंने आपसे कहा 20 लीटर फ्री पेट्रोल है. वाह वाह जी, वाह वाह, थैंक यू. अब मैं आपसे कह रहा हूँ
1: पेट्रोल मिल गया तो मुझे बड़ी अच्छी बात है.
2: अरे अरे तो ये क्या
1: पुराना कहाँ से लाऊं?
2: पुराना आपको लाना पड़ेगा. ये भी मैं पुराना भी वैसे हर वक्त रोते रहते हैं पेट्रोल के पैसे बढ़ गए बढ़ गए. हम फ्री दे रहे हैं तो ला के नहीं दे सकते पुराना? यार कमाल कर रहे हैं आप.
1: अच्छा. पुराना लाओ,
2: नया
1: ले जाओ, ये ले
2: जाओ. अरे मेरी बात सर जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ. अगर आप पुराना ले भी आए तो भी आपको 20 लीटर पेट्रोल फ्री नहीं मिलेगा. हाँ मुर्गा खाने को जरूर मिल सकता है. सर मजा आ गया आपसे बात करके, मतलब आपके गुस्से से डर गया मैं.
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
3: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
6: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: विद्या बालन, आपने 40 से ज्यादा फिल्में कर ली, 2014 में पद्मश्री कमा लिया, इतने सारे इयर्स ऑफ अचीवमेंट के बाद, do you remember the first song you filmed for?
2: Of course, कस्तू मजा, परिणीता से, और शिलीगुड़ी में शूट हुई थी इस गाने की, और बहुत मजा आया था। इतने लोग थे, और पीरियड फिल्म है, लोग स्कूटरों पे और मोटर बाइक्स पे गाड़ियों में आ रहे थे, एंड वी कुडंट हैव दैट इन द शॉट। सो हम लोग ट्रेन पे थे, और हम लोग ट्रेन एक तरफ लेके जाते, फिर पता चलता कि जब मॉनिटर देखते तो पता चलता कि ये गाड़ियाँ आ गई है, लोग आ गए हैं गाने में, तो फिर से हम लोग रिवर्स में आ जाते, फिर शूट होता। एंड इट्स माय फर्स्ट सॉन्ग, इट्स आल्सो माय फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम परिणीता।
1: ओह, दैट्स अ टफ वन विद्या बालन। परिणीता का हर गाना इतना गोल्डन है, इट्स टफ टू चूज अ फेवरेट। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: अरे यार, मैं तो आज मेरा आईडी कार्ड ही भूल गया हूँ, कॉलेज में कैसे जाऊँ?
1: अरे गोचू, आईडी कार्ड ही भूला है ना, अंदर जाने का रास्ता तो पता ही होगा ना, तो चला जाना।
2: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले।

0: Mirchi. Escabana, poscabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga.
1: Mirchi, murga. Hello.
2: Is that Sanjeev?
1: Yeah, I'm speaking.
2: Hi Sanjeev, I am Atul calling from...
1: Okay.
2: संजीव आपने 3 राउंड्स क्लियर कर लिए हैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के लिए. ये आपका फाइनल राउंड है जिसमें हम कैंडिडेट के पेशेंस चेक करते हैं, उसमें कितने पेशेंस है, कितना इत्मीनान है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि इस तरह की जॉब है. तो आपको लगता है कि आप में पेशेंस हैं सारे?
1: पेशेंस तो है, मैंने जो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया हुआ उसमें भी मेंशन है ये चीज.
2: ओके.
1: कई तरह के कस्टमर्स होते हैं, उनको सेटिस्फाइड करने ही हमारा काम है.
2: कितने साल जॉब करी है आपने इससे पहले?
1: मैंने 2 साल काम किया एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव.
3: चुप कर. 2 साल काम किया एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव.
1: सॉरी सर.
2: कैरी ऑन रखिए. आप बताइए मुझे अपने बारे में. ये मैं आपके पेशेंस चेक कर रहा हूँ. हाँ बताइए. भड़कता हुआ कस्टमर आता है, कॉल करता है, तो उसको किस तरह हैंडल करते थे?
1: कस्टमर्स आए हैं, जब मैंने आपको बताया ना, मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है. इस टाइप के कई कस्टमर्स आते थे जिनको हम बहुत ही कूलली, बहुत पेशेंट के साथ उनको सेटिस्फाइड.
3: बकवास बनकर, बकवास बनकर. कूलली तू करता था, कूलली दांत अंदर कर.
1: हम करते थे सेटिस्फाइड कर.
3: बकवास बनकर, बकवास बनकर.
1: जैसे आप बोल रहे हो ना, ऐसी ज्यादा गुस्सा दिखाते हैं वो लोग.
2: अच्छा, इससे ज्यादा दिखाते. अच्छा मुझे ये बताइए कि मान लीजिए कोई कस्टमर ऐसा है जो कि मान ही नहीं रहा आपकी बात और वो डांटे जा रहा है, डांटे जा रहा है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए?
1: सर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पहले हमारी बात सुने.
3: शट अप.
1: बोलते हैं
3: शट अप.
1: लोग
3: शट अप. अब टेस्ट तुम्हारा खत्म हो चुका. कोई पेशेंस चेक नहीं कर रहा. अब ये असलियत कह रहा हूँ, तुम्हें बोलने की तमीज है नहीं यार.
1: अभी तक
3: अभी तक पेशेंस चेक कर रहे, लेकिन वाकई में तुझे तमीज ही नहीं है. मोबाइल के कस्टमर केयर में जॉब करने के लिए कह रहा है करूंगा करूंगा. मोबाइल ने पकड़ा कभी हाथ में?
1: बोल
3: जॉब करूंगा, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनूंगा. कस्टमर इंसान तो बन जा पहले यार. इंसान बना नहीं है.
1: खुद को देखा आपने कभी?
2: संजीव कोई इंटरव्यू की कॉल नहीं है. मुझे पता चला तुमने 3 राउंड दे चुके हो. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बना रहा था. लेकिन तुम पूरी तरह क्वालिफाई कर गए हो ये राउंड. तुम्हें जॉब मैं दूंगा. तुम मेरे शो में आके बैठो. मुझ पे भी कभी कभी डांट पड़ती है.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
3: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट। क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: दीवाना है।
1: ओनली इमेजिन द काइंड ऑफ रोमांटिक यू आर। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
3: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
0: सर वो क्या है ना, अगले हफ्ते मेरी शादी होने वाली है, तो मुझे आप बताओ ना कि वो सुहागरात में कौन सा परफ्यूम लगा के जाऊं।
1: अरे शादी के दिन तो ना के जा।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga.
2: Mirchi, murga.
3: Hello.
4: से बोल रहे हैं?
3: हाँ जी।
4: मुझे कुछ ऑर्डर करना था, आप लिख लेंगे प्लीज?
3: या
4: और रात के खाने के लिए लिख लीजिए प्लीज। ढाई किलो अरहर दाल, 3 किलो चना दाल, 3.5 किलो चना कबूली, 4 किलो चना डॉलर प्रीमियम, 1 बेसन। हाँ,
3: एक्चुअली में 2.5 किलो वगैरह हमारे यहाँ नहीं होता, 2-2 किलो में, 1-1 किलो में पैकिंग होती है, तो 2 kg।
4: अब आपको ये मैं क्या, वो 2.5 किलो ही खाते हैं, मैं क्या करूँ?
3: Oh my God.
4: मेरे हस्बैंड हैं, डाइट उनकी है, आपको क्या प्रॉब्लम है?
3: नहीं मैम प्रॉब्लम।
4: 4 किलो चना दाल, 4 किलो चना कबूली,
3: चना दाल, चना कबूली, एरोप्लेन भेजूं?
4: एरोप्लेन भेजिए, हमें जाना ना हनीमून पे।
3: सॉरी मैम, मैं ये बोल रहा हूँ 5 kg एरोप्लेन राइट मैम, सॉरी।
4: एक सेकेंड, कभी फोन आ रहा है। स्वीट हार्ट आई लव यू, ऑर्डर दे रही हूँ। तुम आओ तो सही ना। No, I will be waiting for you, my sweetheart, my Janu.
3: Hello.
4: One second, मेरे हस्बैंड से बात चल रही है, 1 second. कब आओगे रात में? अच्छा सुनो, मेरे लिए रात में वो लेके आना ना, वही वही कुछ पूछे कुछ पूछे. Okay, sweetheart, bye. हाँ लिखिए, 3 प्लेट गोलगप्पे।
3: गोलगप्पे नहीं होते,
4: चकोर दे दीजिए। गोलगप्पे नहीं है, चकोर वाले दे दीजिए।
3: है नहीं मैम हमारे यहाँ,
4: लंबे वाले
3: नहीं है वो।
4: अच्छा लास्ट फाइनली, मैं और मेरे हस्बैंड जो बहुत शौक से खाते हैं,
3: क्या खाते हैं
4: मैम? मुर्गा
3: मैम, वो भी नहीं है।
4: आपको ये नहीं मालूम दिल्ली में सबसे अच्छा मुर्गा कहाँ बनता है?
3: मैम ये हमें नहीं
4: पता। हमें मालूम है, मैं बताऊँ आपको?
3: हाँ जी मैम बताइए।
5: रेडियो मिर्ची, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं छोटा सा मजाक कर रहा था आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया भाई साहब हमने।
3: आपकी आवाज में काफी
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
7: मिष्टी दोई, संगीत और मीठी बोली के शहर में अब खून की होली शुरू हो चुकी है।
8: यहाँ हर मुस्कुराहट के पीछे एक राज है, और क्राइम का रंग अब ब्लैक हो चुका है। मैं आ रही हूँ इनके खेल खत्म करने।
7: संगीत की धुन अब चीखों में बदलेगी। Officer Brown is back to kill the devil. The dark side of Kolkata awaits. Brown, streaming from 12th June, only on Z5.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
3: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
4: और एड ब्रेक भी। मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
6: बार बार।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
4: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: बादशाह, आपने इतने गाने बनाए, इतने गाने कंपोज किए, सबसे पहला रैप आपने किस पे लिखा था?
2: जो मैथ्स के टीचर है उन पे रैप लिखा था। टीचर अच्छे नहीं थे, क्योंकि एक जैसे टीचर होते हैं वैसे वो थे नहीं, तो मैंने उन पे रैप लिखा जो काफी मशहूर हो गया। दैट वाज माय फर्स्ट। दिक्कत तब हुई जब वो रैप उन्होंने ही पढ़ लिया, उसके बाद मेरा एजुकेशन पे से विश्वास ही उठ गया।
1: 2+2=4, बादशाह गिव अस मोर, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
3: Only on Mirchi, it's hot.

0: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
1: सर, कंप्यूटर में वायरस घुस गया है, क्या करूं?
0: ओ माय गॉड, आज ही डॉक्टर के पास लेके जा और वैक्सीन दिला।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: गाने को गाया है शान, प्रिया पाटीदार और विक्रम मॉन्ट्रोज ने। म्यूजिक दिया है विक्रम मॉन्ट्रोज और साजिद वाजिद ने, और लिरिक्स लिखे हैं मेघा बाली और शब्बीर अहमद ने। वेलकम टू द जंगल मूवी से सुनिए वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: हेलो
2: हेलो सुनील जी।
1: हाँ जी
2: सुनील जी, पेट्रोल पंप से बोल रहा हूँ। सर कंग्रेचुलेशन, आप लकी विनर हैं।
1: किस चीज के जी सर?
2: सर आपका 20 लीटर पेट्रोल निकला है बिल्कुल फ्री। मैं तो सोच रहा था बड़े खुश हो जाएंगे क्योंकि पेट्रोल के
1: यार, भी तो, बहुत बड़ी।
2: तो सर ये आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको फिल कराना होगा, भरवाना होगा अपनी गाड़ी में।
1: ठीक है, अच्छा एक बात तो बताइए सर जी।
2: हाँ जी,
1: इसके क्या पैसे ऐसे देने पड़ेंगे कुछ?
2: नहीं सर, पैसे कोई नहीं, कोई पैसा नहीं।
1: कंडीशन वगैरह?
2: नहीं सर, कोई कंडीशन नहीं है, पुराने ग्राहक है आप, ऐसे कैसे कंडीशन रख लेंगे?
1: तो ठीक है, ग्राहक पुराने ग्राहक को आदमी थोड़ा अपने समझ के कहते हैं ना, अपने कोई ज्यादा।
2: बस सर बिल्कुल फ्री है, पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे, एक छोटा सा काम करना पड़ेगा।
1: क्या?
2: पुराना लाइए नया ले जाइए।
1: क्या भैया पुराना क्या लाऊं भाई?
2: पुराना पेट्रोल लाओ नया ले जाओ सर, बस यही है, और वो भी आप ही का निकला।
1: क्या बात हुई, पुराना कहाँ से लाऊं?
2: सर पुराना जो आपने
1: पुराना हो तो जल के वो खत्म कर दिया हो
2: तो सर, जो आपने पुराना यूज किया होगा वो तो लाना पड़ेगा ना आपको।
1: धुआं मैं कहाँ से इकट्ठा करूँ?
2: पहले तो आप बड़े दांत फाड़ रहे थे जब मैंने आपसे कहा 20 लीटर फ्री पेट्रोल है, वाह वाह जी वाह वाह थैंक यू। अब मैं आपसे कह रहा हूँ
1: पेट्रोल मिल गया तो बड़ी अच्छी बात है।
2: अरे अरे तो ये क्या
1: पुराना कहाँ से लाऊं?
2: पुराना आपको लाना पड़ेगा, ये भी मैं पुराना भी। वैसे हर वक्त रोते रहते हैं पेट्रोल के पैसे बढ़ गए, हम फ्री दे रहे हैं तो ला के नहीं दे सकते पुराना। यार कमाल कर रहे हैं आप,
1: पेट्रोल फालतू का। अच्छा। पुराना लाओ नया ले जाओ, ये ले जाओ।
3: अरे मेरी बात सर जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। अगर आप पुराना ले भी आए तो भी आपको 20 लीटर पेट्रोल फ्री नहीं मिलेगा, हाँ मुर्गा खाने को जरूर मिल सकता है। सर मजा आ गया आपसे बात करके, मतलब आपके गुस्से से डर गया मैं।
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: में चीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
3: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
4: मिर्ची, इट्स हॉट। मिष्टी दोई, संगीत और मीठी बोली के शहर में अब खून की होली शुरू हो चुकी है।
5: यहाँ हर मुस्कुराहट के पीछे एक राज है और क्राइम का रंग अब ब्लैक हो चुका है। मैं आ रही हूँ इनके खेल खत्म करने।
4: संगीत की धुन अब चीखों में बदलेगी। Officer Brown is back to kill the devil. The dark side of Kolkata awaits. Brown, streaming from 12th June, only on Z5.
6: अर्ज किया है।
7: इरशाद इरशाद।

0: IPay payments ka wah tarika. With IPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the IPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. IPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
2: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
3: बहुत कुछ होगा।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6
4: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: श्रेयस तलपड़े आपकी सबसे पहली हिंदी फिल्म इकबाल थी, लेकिन क्या आपको याद है सबसे पहला गाना आपने कौन सा शूट किया था?
3: एक्चुअली टेलीविजन सीरियल का हमने एक टाइटल सॉन्ग शूट किया था, तो आई थिंक दैट प्रोबब्ली वाज द वन व्हिच वाज माय फर्स्ट सॉन्ग एज सच. मराठी गाना था वो, टाइटल था सीरियल का बेधुंद मना चल लहरी. इट वाज लाइक बेधुंद मना ची लहर लहरी चा होती लाटा लाटा होता कहर किनारा शोधती हजार वाटा.
2: श्रेयस, यू आर नॉट ओनली अ गुड एक्टर, यू आर अ फाइन सिंगर. मुझे लगता है आपको ये वाला ऑप्शन अब एक्सप्लोर करना शुरू कर लेना चाहिए. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए।
0: सर, आई डोंट नो व्हाट टू डू आफ्टर कॉलेज, आप बताओ ना मुझे क्या करना चाहिए।
1: अरे तो सिंपल है ना, फटाफट कर जा, मम्मी इंतजार कर रही होगी।

सलाम नमस्ते, क्या हाल चाल कतर वालो? वेलकम टू मिर्ची वीकेंड वाइब्स, जहाँ पे हम बातें करेंगे ढेरों सारी, चाहे वो शोज हो, इवेंट्स हो, एग्जीबिशंस हो, सब कुछ यही बताऊंगी आपको मेरे शो पे। और उसके अलावा बात करेंगे कुछ हिडन जेम्स के कतर की, और खूब सारी एंटरटेनमेंट की बातें भी होंगी, गाने भी सुनाए जाएंगे और एंजॉयमेंट भी होगा। बस उसके लिए करना क्या, मेरे साथ बने रहना, यानी कि मिर्ची ईशा के साथ ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga. Mirchi, murga.
2: हेलो
3: हेलो नवनीत
2: या
3: नवनीत, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ।
2: हाय नवेद,
3: क्या हाल चाल है?
2: बढ़िया है।
3: आपने मैसेज किया था अपने फादर का मुर्गा बनवाने के लिए।
2: हाँ हाँ हाँ, बन गया क्या?
3: यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुमने किस आदमी का नंबर दिया यार मुझे?
2: हाँ?
3: सोच समझ के नंबर देते हो नहीं देते हो? मैंने उनको फोन किया, वो मुझ पे भड़क रहे हैं यार शुरू में ही।
2: या मैंने तो अपने पापा का ही नंबर दिया।
3: पापा का नंबर, नाम क्या है यार पापा का?
2: मिस्टर दिलीप।
3: उनसे ही मेरी बात हुई है यार। मैंने माना, मजाक अपनी जगह है, मुर्गा बनाता हूँ, मैं भी हंसता हूँ, तुम्हें भी हंसाता हूँ, लेकिन यार ये थोड़ी है उसका नाजायज फायदा उठा लो तुम।
2: मैं क्या कुछ गलत
3: बोल दिया यार? मैं मतलब यहाँ पे इसलिए आता हूँ कि मैं गालियाँ सुनूं यार?
2: अब ऐसी बात क्या,
3: ऐसी बात क्या हो गई? अपने फादर से पूछो यार जाके। नहीं, अपने फादर से क्यों नहीं पूछते तुम जाके?
2: अब मैं क्या
3: पूछूं यार? तुम्हें पहले कहना चाहिए था मुझसे कि उन्हें गुस्सा आता है, वो ज्यादा भड़क जाते हैं यार।
2: अब गुस्सा तो सभी को आता है, ठीक से बात कर ले।
3: तुम मुझे ये बताओगे कि मैं कैसे बात कर लेता यार? नवनीत कमॉन यार, ऐसे नहीं होता है। मैंने माना कि चलो एक शो है, मुर्गा बनाते हैं उसमें, ये थोड़ी यार क्या तुम उठा के किसी का भी नंबर दे दो, किसी का भी मुर्गा बनवा लो।
2: अब कुछ यानी कुछ ज्यादा पापा ने बोल दिया तो तरफ से मैं माफी
3: मांगने से क्या होता है यार? ऐसी मैं माफी मांग रहा था उनसे, मैंने माफी मांगी है 50, वो नहीं मान रहे। तुमने यार पता नहीं उठा के क्या समझ रखा है मुझे।
2: अब मैंने क्या, आपने बोला कि मुर्गा बनाना, SMS कर दो, मैंने कर दिया।
3: तुम मुझे क्या पता था यार तुम अपने ऐसे फादर का नंबर दे दोगे यार?
2: ऐसे फादर क्या, मेरे तो एक ही फादर है, मैं ढूंढ के लाऊंगा।
3: अरे तो यार अब तुम उल्टे मुझसे बात कर रहे हो। एक तो पहले बाप की सुनिए, अब मैं बेटे की सुन लो। यार तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया क्या?
2: मेरा खराब नहीं हो गया, मुझे लग रहा है आप ही का थोड़ा हो गया।
3: इस वक्त तुम्हारा ही मुर्गा बन रहा है, मेरे तुम्हारी फादर से अभी तक बात भी नहीं। ऐसे अच्छे काम होते रहते हैं यहाँ पर। वैसे तुम्हारे फादर के वाकई में गुस्से वाले हैं?
2: नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, कभी कभी तो गुस्सा कर ही देते हैं।
3: चलो एक बार प्यार से मेरे साथ उनकी तरफ से बोल दो।
2: कुकड़ुकू।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

एक ऐसा सीजन जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार होता है. देखिए गर्मियों का इंतजार तो नहीं होता, लेकिन गर्मियों में आने वाले आम का इंतजार बहुत दिल से किया जाता है. बात कर रही हूँ इंडियन मैंगो एग्जीबिशन की 2026 में जो होने वाली है. जी हाँ, 18 जून से 26 जून तक ये एग्जीबिशन यहाँ पे होगा, यानी कि ईस्टर्न स्क्वायर सूक वाकिफ में होगा. एंड ये टोटली फ्री है. एंड इसका जो टाइमिंग है दैट इज 4 PM to 10 PM. भाई एक आम ही एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना मैं खाना नहीं खा सकती. एग्जैक्टली, यू हर्ड दैट राइट. मुझे दाल चावल या कुछ भी है उसके साथ आम चाहिए ही चाहिए. एंड दैट आम पगलू. तो अगर आपके दोस्तों में भी कोई आम पगलू है या कोई आम इतना पसंद करता है कि वो बहुत सारी पेटियां खरीद के घर लेके जाता है, तो उसके साथ ये इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिए और मुझे सुनते रहिए, यानी कि मिर्ची ईशा को, ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन. इट्स ऑल.

वो कहते हैं ना कि एक आर्टिस्ट के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रखता है, वो आप कभी नहीं समझ पाएंगे। एक आर्टिस्ट को ही पता होता है किस तरीके से, नए तरीके से हम अपने अपने आर्ट को बहुत खूबसूरती से बयां कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक आर्टिस्ट ही जान सकता है। वैसे ही अगर आप एक मास्टरपीस देखना चाहते हैं तो जा सकते हैं रौदत अल हमामा पार्क, जहाँ पे गार्डन ऑफ लेटर्स देखने को मिलेंगे, विच इज डन बाय पब्लिक वर्क्स अथॉरिटी ने लॉन्च किया है ये अशकल ने, एंड इट इज इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी एंड खरामा। इसमें आपको देखने को मिलेगा 540 किलोमीटर की दीवार पे बहुत खूबसूरत तरीके से अरेबिक कैलीग्राफी को लिखा गया है। इसमें दिखता है किस तरीके से लेटर्स को कलरफुल फॉर्म में लिखा गया है, एंड नेचर के साथ वो खूबसूरत से लेटर्स कुछ तो बयां कर रहे हैं। एंड एन आर्टिस्ट कैन ओनली अंडरस्टैंड द अदर आर्टिस्ट। तो भाई आर्टिस्ट लोग, अगर आपको पसंद है ऐसी चीजें तो आप जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं मुरल आर्ट आज ही एट रौदत अल हमामा पार्क। एंड फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: में चीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
3: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
6: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
7: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
8: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

मेहरबान कदरदान, मैं आ गई हूँ मिर्ची ईशा आपके साथ एक नया फैक्ट शेयर करने। पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में एक ऐसा वर्ड है, सिर्फ एक ऐसा वर्ड है जहाँ पे डबल लेटर्स तीन बार यूज किए जा रहे हैं। मींस डबल लेटर का सेट है, तीन सेट हैं डबल लेटर्स के, और वो सिर्फ एक ही ऐसा वर्ड है जिसका नाम है, आपने सही सोचा, बुक कीपर। जी हाँ, बुक कीपर में डबल ओ भी आता है, डबल के भी आता है, डबल ई भी आता है। That's a strange one. और आप हैरान होंगे कि पूरी इंग्लिश में एक ही ऐसा वर्ड है जो ऐसा है। बाकी ऐसे फैक्ट्स के लिए सुनते रहिए मुझे, यानी कि मिर्ची ईशा को, ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 101.8।

0: Hollywood, Bollywood, Boulder. Only on Mirchi. It's hot.
1: जब भी ताल फिल्म देखती हूँ ऐश्वर्या राय बच्चन के पीछे एक क्यूट लड़का दिखता है और वो कौन है शाहिद कपूर. बट शाहिद इफ आई हैड टू आस्क यू अबाउट योर फिल्म जर्नी एंड योर फर्स्ट सॉन्ग कौन सा था वो.
2: मेरा पहला गाना था इट वॉज इन इश्क इश्क ऑब्वियसली. द फर्स्ट सॉन्ग वॉज दिस सॉन्ग वी डिड इन अ कैंटीन कॉल्ड लव लव लव करो वेयर ऑल द गाइज आर ट्राइंग टू Impress the women.
1: Shahid, what a lovely dive in nostalgia. Aap sun rahe hain Mirchi. It's hot. Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal. Only on Mirchi. It's hot.

0: Mirci. Fresh Maal.
1: High voltage beats और unstoppable groove के साथ सुनो माशुका.

0: इस गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 rupee ट्रायल पैक नाउ।
1: बुक्स आर योर चाइल्ड्स बेस्ट फ्रेंड, इफ यू ऑल्सो थिंक दैट ना, तो आपके लिए ये एक मजेदार जगह लेके आई। इंडियन कल्चरल सेंटर यानी कि ICC ने एस्टैब्लिश की है एक ऐसी लाइब्रेरी जहाँ पे 6000 से ज्यादा बुक्स मिलेंगी डिफरेंट लैंग्वेजेस में, इंडियन डिफरेंट लैंग्वेजेस, चाहे आप पंजाबी हो, गुजराती हो, मराठी हो, हर लैंग्वेज में आपको वहाँ बुक्स मिलेंगी। तो देखिए बहुत आसान है पहुँचना ICC है, बच्चों को लेके जा सकते हैं। इस वीकेंड सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस जाना है ICC और बुक का लुत्फ उठाना है किसी भी लैंग्वेज में, जो भी आपको अच्छी लगती है लीजिए और एंजॉय करिए, मजा ही आ जाएगा। बाकी स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Discabana, puscabana, sacabana. Rambana. Murga, murga. La virba la murga. Milci, murga.
2: Hello.
3: Is that Sanjeev?
2: Yeah, I'm
3: speaking. Hi Sanjeev, I am Atul calling from...
2: Okay.
3: संजीव आपने 3 राउंड्स क्लियर कर लिए हैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के लिए. ये आपका फाइनल राउंड है जिसमें हम कैंडिडेट के पेशेंस चेक करते हैं, उसमें कितने पेशेंस है, कितना इत्मीनान है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि इस तरह की जॉब है. तो आपको लगता है कि आप में पेशेंस हैं सारे?
2: पेशेंस तो है, मैंने जो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया हुआ उसमें भी मेंशन है ये चीज.
3: ओके.
2: कई तरह के कस्टमर्स होते हैं, उनको सेटिस्फाइड करने ही हमारा काम है.
3: कितने साल जॉब करी है आपने इससे पहले?
2: मैंने 2 साल काम किया एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव.
4: चुप कर. 2 साल काम किया एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव.
2: सॉरी सर.
3: कैरी ऑन रखिए. आप बताइए मुझे अपने बारे में. ये मैं आपके पेशेंस चेक कर रहा हूँ. हाँ बताइए. भड़कता हुआ कस्टमर आता है, कॉल करता है, तो उसको किस तरह हैंडल करते थे?
2: कस्टमर्स हैं, जब मैंने आपको बताया ना, मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है. इस टाइप के कई कस्टमर्स आते थे जिनको हम बहुत ही कूलली, बहुत पेशेंट के साथ उनको सेटिस्फाइड.
4: बकवास बनकर कूलली तू करता था. कूलली दांत अंदर कर.
2: हम करते थे सेटिस्फाइड
4: कर. बकवास बनकर
2: जैसे आप बोल रहे हो ना, ऐसी ज्यादा गुस्सा दिखाते हैं वो लोग.
3: अच्छा, इससे ज्यादा दिखाते. अच्छा, मुझे ये बताइए कि मान लीजिए कोई कस्टमर ऐसा है जो कि मान ही नहीं रहा आपकी बात और वो डांटे जा रहा है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए?
2: सर, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पहले हमारी बात सुने.
4: शराब. अब टेस्ट तुम्हारा खत्म हो चुका. कोई पेशेंट चेक नहीं कर रहा. अब ये असलियत कह रहा हूँ, तुम्हें बोलने की तमीज है नहीं यार.
2: अभी तक
4: पेशेंट चेक कर रहे, लेकिन वाकई में तुझे तमीज ही नहीं है. मोबाइल के कस्टमर केयर में जॉब करने के लिए कह रहा है करूंगा. मोबाइल ने पकड़ा कभी हाथ में?
2: बोल
4: जॉब करूंगा, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनूंगा. कस्टमर इंसान तो बन जा पहले यार. इंसान बना नहीं है.
2: खुद को देखा आपने कभी?
3: संजीव, कोई इंटरव्यू की कॉल नहीं है. मुझे पता चला तुमने 3 राउंड दे चुके हो. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुम्हारा मुर्गा बना रहा था. लेकिन तुम पूरी तरह क्वालिफाई कर गए हो ये राउंड. तुम्हें जॉब मैं दूंगा. Okay. तुम मेरे शो में आके बैठो. मुझ पे भी कभी कभी डांट पड़ती है.
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची.

देखिए, रंगों से खेलना एक बहुत मज़ेदार चीज़ होती है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ एक ऐसा इवेंट जहाँ पे आपको इमर्सिव वे में कलर वर्स एक्सपीरियंस करवाया जाएगा, तो अगर आप भी इस कलर वर्स की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो भाई दिन दूर नहीं। जी हाँ, 15 जुलाई से शुरू होने वाला है कतारा कल्चरल विलेज में एक ऐसा खूबसूरत सा एक्सपीरियंस जिसको आप कभी भी भुला नहीं पाएंगे, एंड इट इज अप टू सितंबर 15 तक रहेगा। इस इवेंट में बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो टोटली नई होंगी आपके लिए, आपने कभी नहीं देखी होंगी, जिसमें हम बात करें वर्ल्ड ऑफ लाइट की, कलर की या डिस्कवरी की। ये सब एडवेंचरस चीजें आप वहीं देखोगे, बस आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा उसके लिए। ये इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस है ना, देखो कलर की जो बात होती है ना, तो आई लव कलर्स। जब आज भी मैंने बहुत कलरफुल कपड़े पहने हैं तो भाई उसी से पता लगता है कि हाउ कलरफुल आई एम। तो मैं तो ये इवेंट कभी नहीं छोड़ूंगी, बिकॉज दिस इज अ ब्यूटीफुल इवेंट व्हिच आई थिंक एवरीवन शुड गो। अपने बच्चों को भी साथ लेके जाइए, इंजॉय हो जाएगा। एक ऐसा कलरफुल इवेंट जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, एक ऐसा इमर्सिव एक्सपीरियंस। भाई बस एंजॉय करिए मेरे साथ, ऐसे ही खूबसूरत से इवेंट आपको बताती रहूंगी। स्टे ट्यून्ड विद मी 89.6 मिर्ची 1.8।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
3: भाई, इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के

मैं वापस आऊंगा। जी नहीं, मैं बिल्कुल भी बॉर्डर की फिल्म की बात नहीं कर रही। मैं बात कर रही हूँ दिलजीत दोसांझ की आने वाली मूवी के बारे में, मैं वापस आऊंगा। जी हाँ, जहाँ पे स्टारर परवरी वाघ इनके साथ एक्टिंग कर रही हैं एंड उसके अलावा नुजरुद्दीन शाह देखने को मिलेंगे। एंड इसकी सबसे मस्त बात ये है ना कि ये डायरेक्टेड है बाय इम्तियाज अली और एआर रहमान जी का म्यूजिक है। भाई क्या ही कहने, सोने पे सुहागा हो गया। ये मूवी हिट तो होगी होगी, जब ये कॉम्बिनेशन बन जाते हैं ना सारे, तो भाई हिट होने का 100% चांस होता है। बाकी ये रिलीज होगी 12 जून 2026 को। देखना ये होगा कि ये जो रोमांटिक ड्रामा होगा ये कितना मेलो होगा और कितना खूबसूरती से दिखाया होगा, ये देखना बहुत जरूरी है। तो वेट करना पड़ेगा उसके लिए। एंड फॉर मोर ऐसी चटपटी बातों के लिए सुनते रहिए मुझे, यानी कि मिर्ची ईशा को ऑन 89.6 मिर्ची वन।

0: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
1: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
2: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6
4: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

अच्छा तो हम चलते हैं। और अगर आप पूछ रहे हैं कि फिर कब मिलोगे, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीकेंड। जी हाँ, फ्राइडे एंड सैटरडे मिलूंगी आपको इसी जगह इसी समय। और करना क्या है आपको, हमको फॉलो भी करना है इंस्टाग्राम हैंडल्स पे हमारे मिर्ची वन कतर को आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ढेरों सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, अपडेशन मिलती रहेगी हमारे इवेंट्स से रिलेटेड। कुछ भी हो रहा है कतर में, सब कुछ आपको पता लगेगा हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे। उसके अलावा आप मुझे मेरे पर्सनल अकाउंट पे भी फॉलो कर सकते हैं, यानी कि मिर्ची ईशा पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। और इंटरटेनमेंट का डोज लेने के लिए बस आप सुनते रहिए हमें, यानी कि मिर्ची वान कदर को। इट्स हॉट।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
0: सर वो क्या है ना, अगले हफ्ते मेरी शादी होने वाली है, तो मुझे आप बताओ ना कि वो सुहागरात में कौन सा परफ्यूम लगा के जाऊं।
1: अरे शादी के दिन तो ना के जा।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
3: एक बात बताइए, अगर कल सुबह बॉलीवुड उठकर अपनी याददाश्त खो दे तो उसे अपने बारे में सबसे पहले क्या याद आएगा? धुरंधर, ए.आर. रहमान, या फिर वो गाने जो सालों बाद भी बिना परमिशन के दिमाग में घुस जाते हैं? मुझे लगता है बॉलीवुड की सबसे बड़ी सुपर पावर कभी स्टार्स थे ही नहीं, इट वॉज ऑलवेज मेमोरी। और इस हफ्ते भी कहानी कुछ वैसी ही है। कुछ लोग पुरानी यादों को फिर से बेचने निकले हैं, कुछ लोग नई यादें बना रहे हैं, कुछ लोग नोस्टैल्जिया पे जी रहे हैं एंड कुछ लोग फ्यूचर लिख रहे हैं। और हम इन दोनों के बीच खड़े हैं, पास्ट और फ्यूचर के बीच, मेमोरी और मैडनेस के बीच। हाय, इट्स मी सुरेन एंड दिस इज इंडियाज मोस्ट डेफिनेटिव हिंदी म्यूजिक काउंटडाउन द मिर्ची टॉप 20। एंड आज के एपिसोड की शुरुआत कर रहा हूं विद अ रहमान सॉन्ग फ्रॉम मैं वापस आऊंगा, विच इज अ डीसेंट साउंडट्रैक, लेकिन ये रॉकस्टार या हाईवे के लेवल की नहीं है। ये बात आई एम कंप्लीटली श्योर ऑफ। द सॉन्ग्स हैवंट कनेक्टेड द सेम वे, बट हियर इज अ नाइस सॉन्ग मस्कारा, जिसे गाया है निलंजना घोष दास्तीदार ने, एंड इट इज ऑन नंबर 20।
4: नंबर 20।

0: कभी कभी मुझे लगता है कि दुनिया की हर बड़ी चीज थोड़ी सी दीवानगी के साथ ही शुरू होती है। एक ऐसा सपना जिसे देखने की हिम्मत सब में नहीं होती। पच्चीस साल पहले एक फिल्म आई थी, लेकिन मैं उसका नाम अभी नहीं लूंगा। पहले उसकी याद के बारे में बात करूंगा। मिट्टी उड़ रही थी, धूप सर पर थी, लोग पसीने में भीगे हुए थे और एक पूरा गांव अपनी सांसें रोक कर खड़ा था। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं था, ये उम्मीद थी, ये जिद थी, ये वो एहसास था कि कभी कभी जिंदगी में एक ही मौका मिलता है और उसी एक मौके पर सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। आज भी जब उस फिल्म के सीन्स हमें याद आते हैं तो स्कोर याद आता है, वो ढोल याद आता है, भुवन याद आता है, गौरी याद आती है और सबसे ज्यादा वो फीलिंग याद आती है कि हम किसी फिल्म को नहीं देख रहे थे, हम उस गांव के साथ जी रहे थे। और फिर सोचिए क्या आइडिया था, गांव के लोग, अंग्रेज, 3 घंटे से लंबी ये फिल्म और क्लाइमैक्स में एक क्रिकेट मैच। आज भी ये पिच सुनकर प्रोड्यूसर्स डर जाते हैं, लेकिन आमिर खान और आशुतोष गोवारिकर ने उस वक्त डर और कॉमन सेंस दोनों को साइड रख दिया और बना दी लगान। मुझे लगता है लगान की सबसे बड़ी जीत ऑस्कर नॉमिनेशन नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी जीत थी कि उसने बॉलीवुड को बताया कि अगर कहानी में जान हो तो ऑडियंस किसी भी सफर पर आपके साथ चलने को तैयार हो जाती है। 25 साल बाद भी हम उस फिल्म को याद करते हैं उसके डायलॉग्स के लिए नहीं, उसकी बॉक्स ऑफिस के लिए नहीं, बल्कि उस एहसास के लिए। और आज भी सवाल वही है, अगली लगान कौन बनाएगा? This epic film is re-releasing, so watch it अगर आपको वक्त मिले। बिलाल मिर्ची .20 पर फहीम अब्दुल्ला की आवाज में one of my favorite tracks on the show, this is चांद मेरा दिल on number 18.
1: Number 18.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची
2: हेलो
3: से बोल रहे हैं।
2: हाँ जी
3: मुझे कुछ ऑर्डर करना था, आप लिख लेंगे प्लीज?
2: या
3: और रात के खाने के लिए लिख लीजिए प्लीज।
2: बोलिए।
3: 2.5 किलो अरहर दाल, 3 किलो चना दाल, 3.5 किलो चना कबूली, 4 किलो चना डॉलर प्रीमियम, 1 बेसन। हाँ
2: एक्चुअली में 2.5 किलो वगैरह हमारे यहाँ नहीं होता, 2-2 किलो में, 1-1 किलो में पैकिंग होती है, तो 2 केजी होती है।
3: अब आपको ये मैं क्या, वो 2.5 किलो ही खाते हैं, मैं क्या करूँ?
2: ओह माय गॉड,
3: मेरे हस्बैंड है, डाइट उनकी है, आपको क्या प्रॉब्लम है?
2: नहीं मैम प्रॉब्लम।
3: 4 किलो चना दाल, 4 किलो चना कबूली,
2: चना दाल, चना कबूली, एरोप्लेन भेजूं?
3: एरोप्लेन भेजिए, हमें जाना ना हनीमून पे।
2: सॉरी मैम, मैं ये बोल रहा हूँ 5 केजी एरोप्लेन राइट मैम, सॉरी।
3: एक सेकेंड, कभी फोन आ रहा है। स्वीट हार्ट आई लव यू, ऑर्डर दे रही हूँ। तुम आओ तो सही ना। No, I will be waiting for you, my sweetheart, my Janu.
2: Hello.
3: One second, मेरे हस्बैंड से बात चल रही है, one second. कब आओगे रात में? अच्छा सुनो, मेरे लिए रात में वो लेके आना ना, वही वही कुछ पूछे कुछ पूछे. Okay, sweetheart, bye. हाँ लिखिए, 3 प्लेट गोलगप्पे।
2: गोलगप्पे नहीं होते,
3: चकोर दे दीजिए। गोलगप्पे नहीं है, चकोर वाले दे दीजिए।
2: है नहीं मैम हमारे यहाँ,
3: लंबे वाले
2: नहीं है वो।
3: अच्छा लास्ट फाइनली, मैं और मेरे हस्बैंड जो बहुत शौक से खाते हैं,
2: क्या खाते हैं मैम?
3: मुर्गा
2: मैम, वो भी नहीं है।
3: आपको ये नहीं मालूम दिल्ली में सबसे अच्छा मुर्गा कहाँ बनता है?
2: मैम ये हमें नहीं
3: पता। हमें मालूम है, मैं बताऊँ आपको?
2: हाँ जी मैम बताइए।
4: रेडियो मिर्ची, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं छोटा सा मजाक कर रहा था आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया भाई साहब हमने।
2: आपकी आवाज में काफी
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: मिष्टी दोई, संगीत और मीठी बोली के शहर में अब खून की होली शुरू हो चुकी है।
6: यहाँ हर मुस्कुराहट के पीछे एक राज है और क्राइम का रंग अब ब्लैक हो चुका है। मैं आ रही हूँ इनके खेल खत्म करने।
5: संगीत की धुन अब चीखों में बदलेगी। Officer Brown is back to kill the devil. The dark side of Kolkata awaits. Brown, streaming from 12th June, only on Z5.

0: वेलकम टू द जंगल, पूरी इंडस्ट्री दिख जाएगी भाई आपको इस फिल्म में। एंड टॉकिंग ऑफ दिस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एके बॉलीवुड, कभी कभी किसी एक फिल्म की कामयाबी पूरी इंडस्ट्री के लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि वो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस बदल देती है परमानेंटली। धुरंधर के बाद मुझे लगता है कि इंडियन स्पाई जॉनर उसी फेज में है। अब सिर्फ एक्सप्लोजन्स काफी नहीं है, अब सिर्फ स्लो मोशन वॉक्स काफी नहीं है, अब सिर्फ स्टाइलिश फ्रेम्स काफी नहीं है। ऑडियंस को खतरा महसूस होना चाहिए, वो दाव पेच महसूस होने चाहिए, और शायद इसलिए यशराज की फिल्म अल्फा का टीजर उतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाया जितनी उम्मीद की थी। इट्स गॉट आलिया भट्ट, इट्स गॉट बॉबी देओल, एंड इट इज गॉट शर्वरी। इट्स पार्ट ऑफ द YRFY यूनिवर्स। कागज पर तो सब कुछ सही लगता है, लेकिन टीजर देखने के बाद मुझे एक ही चीज महसूस हुई, सब कुछ बहुत कंट्रोल्ड है, बहुत पॉलिश्ड है, बहुत कैलकुलेटेड है, और स्पाई फिल्म्स कैलकुलेशन से नहीं केओस से याद रहती हैं। धुरंधर देखकर लगा था कि यार कुछ भी हो सकता है इस फिल्म में, अल्फा देखकर लगता है सब कुछ पहले से डिसाइड हो चुका है। और वैसे एक और सवाल है, फिल्म में शर्वरी भी है लेकिन टीजर देखकर तो ऐसा लगा जैसे उनका पासपोर्ट ही कहीं खो गया है। देखते हैं फिल्म क्या करती है, बिकॉज टीजर तो बस पहली झलक होती है। फिलहाल शर्वरी की जब बात चली ही है तो चलिए उनकी दूसरी फिल्म की तरफ। मैं वापस आऊंगा AR रहमान, जब नॉस्टैल्जिया को छू लेते हैं ना तो वो से म्यूजियम पीस नहीं बनाते, उसमें नई जान फूंक देते हैं। इश्क मस्ताना में 1940s के बिग बैंड जैज का रंग है, पंजाबी फोक की मिट्टी है, और मोहित चौहान की आवाज में वो खनक है जो सीधा हिट करती है। इट्स डेब्यूइंग ऑन नंबर 16, दिस इज इश्क मस्ताना by AR Rahman and Irshad Kamil.
1: Number 16.

0: ट्रेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
4: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: एकदम सही सुना तुमने, किम्स हेल्थ पर मिल रहा है फ्री डेंटल कंसल्टेशन। कोई पेमेंट नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, बस पहले अपने डेंटल इश्यूज पहचानो, ट्रीटमेंट डिसाइड बाद में करो।
7: लिमिटेड ऑफर वैलिड फॉर जनरल एंड स्पेशलाइज्ड बोथ। बुक करो अपना फ्री डेंटल चेकअप सिर्फ किम्स हेल्थ पर।
8: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
9: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है।
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM मिर्ची वन इट्स हॉट।
0: Only on Mirchi. It's hot.
12: Number 50.

हमने वही दिल लगाया। और इस गाने की तरह बॉलीवुड में भी कुछ ट्रेंड्स ऐसे होते हैं जो अचानक वायरल नहीं होते, वो धीरे धीरे इंडस्ट्री का रूल बन जाते हैं। आज किसी भी बड़े हीरो को देख लीजिए, कॉकटेल में शाहिद कपूर है, जवानी तो इश्क होना है विद वरुण धवन, या फिर आने वाली कोई भी फिल्म, एक चीज ऑलमोस्ट नॉन नेगोशिएबल हो चुकी है, एब्स। कभी सिक्स पैक, कभी एट पैक, कभी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो, तो कभी डाइट प्लान। आजकल रोल अनाउंस होने से पहले एब्स अनाउंस हो जाते हैं। और अगर पूछा जाए कि ये सब किसने शुरू किया था, तो जवाब बड़ा ही आसान है, ऑफ कोर्स मैन भाई, सलमान खान। लेकिन मुझे लगता है बॉलीवुड ने सलमान खान की लेगेसी का सिर्फ विजिबल हिस्सा अडॉप्ट किया, इनविजिबल हिस्सा तो छोड़ ही दिया। आज अहान पांडे को देखिए, नंबर 40।

0: The title song of Sayyara, which is on number 14, and Sayyara ke liye Ahaan musician bane. Ali Abbas Zafar ki action film ke liye apni body ko transform kiya, hard work kiya, aur ye zaruri bhi hai. Lekin Salman Khan star sirf isliye nahi bane kyunki wo shirt utar sakte the. Wo star bane the kyunki screen par unme ek warmth thi, ek charm tha, ek emotional honesty thi. Body attention zarur lati thi, lekin emotion repeat value lata hai. शायद इसलिए सलमान की कुछ सबसे प्यारे परफॉर्मेंसेस वो हैं जहां लोगों ने उनके एब्स नहीं उनका दिल देखा, उनकी आंखें देखी. मेरा रीवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक इज फ्रॉम हम दिल दे चुके सनम. दिस इज कविता कृष्णमूर्ति एंड कुमार सानू. दिस इज आंखों की गुस्ताखियां.
1: टॉप 20 रीवाइंड.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: बादशाह आपने इतने गाने बनाए, इतने गाने कंपोज किए, सबसे पहला रैप आपने किस पे लिखा था?
4: जो मैथ्स के टीचर है उन पे रैप लिखा था। टीचर अच्छे नहीं थे क्योंकि एक जैसे टीचर होते हैं वैसे वो थे नहीं, तो मैंने उन पे रैप लिखा जो काफी मशहूर हो गया। दैट वाज माय फर्स्ट। दिक्कत तब हुई जब वो रैप उन्होंने ही पढ़ लिया, उसके बाद मेरा एजुकेशन पे से विश्वास ही उठ गया।
3: 2+2=4 बादशाह गिव अस मोर इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood,

0: वो नहीं, और इम्तियाज अली की फिल्मों की एक बात मुझे हमेशा पसंद आई है, उनके कैरेक्टर्स अक्सर किसी चीज का इंतजार कर रहे होते हैं, प्यार का, खुद को ढूंढने का, या फिर एक मौके का। और शायद इसलिए मुझे एक और फिल्म उतनी ही एक्साइटिंग लग रही है, एक ऐसी फिल्म जो अभी रिलीज भी नहीं हुई है लेकिन जिसके आसपास एक अजीब सा बिलीफ बिल्ड हो रहा है। बंटवारा, जिसे हम पहले लाहौर 1947 के नाम से जानते थे। सोचिए, लाल सिंह चड्ढा के बाद आमिर खान ने एक्टिंग से ब्रेक लेने का फैसला कर लिया था, लेकिन जिस स्क्रिप्ट ने उन्हें वापस खींच लिया वो ये वाली थी। राजकुमार संतोषी, सनी दियोल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, ए.आर. रहमान, और फिर कुछ महीने पहले जावेद अख्तर साहब ने एक प्रिडिक्शन कर दी। सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं, अपनी रेप्यूटेशन दांव पर लगा दी।
1: एक प्रिडिक्शन में करना चाहता हूं, आई नो आई एम पुटिंग माय नेक आउट ऑन द ब्लॉक, मगर मैं इस सिलसिले में थोड़ा सा वेन हूं। जैसे कि मेरे आमिर खान साहब जब ये भर रहे थे कॉन्टिन्यूटी बुक, तो मैंने कहा ये लड़का सुपरस्टार है। यही बात मैंने अमिताभ बच्चन, जिनकी 11 फिल्में फेल हुई थी, उनके बारे में कही थी, और अपने सारे एग्ज उस बास्केट में रखे थे। मुझे मालूम था ये बहुत सुपरस्टार, एक्सेप्शनल टैलेंट आदमी। यही बात मैंने अनिल कपूर के बारे में कही थी और शंकर महादेवन के बारे में कही थी और पिक्चरों के बारे में भी कही है। मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव बीन राइट, इफ आई हैव नॉट लाइक द पिक्चर, दैट पिक्चर इज नॉट ट्रू। मैं आपको बताता हूँ, एक पिक्चर आने वाली है जो चाहे मल्टीप्लेक्स हो और चाहे ऑडियंस हो सिंगल, उसमें वो पिक्चर चलेगी और लोगों को पसंद आएगी। वो पिक्चर इस वक्त ये बना रहे हैं, मैं आई एम पुटिंग माय नेक ऑन द ब्लॉक। मुझे मालूम है कि आप लोग भूलेंगे नहीं, मगर जब मैं सही साबित हूँ तो सलाम करने आइएगा।
0: वाओ, मुझे नहीं पता बंटवारा ब्लॉकबस्टर होगी कि नहीं, मुझे ये नहीं पता कि ये इस साल की सबसे बड़ी फिल्म होगी कि नहीं, लेकिन जब इतने बड़े लोग एक ही कहानी पर इतना भरोसा दिखाते हैं तो क्यूरियोसिटी अपने आप बढ़ जाती है। और अब देखना यह है कि ये बिलीफ स्क्रीन पर भी उतनी ही मजबूत लगती है या नहीं। खैर, एक तरफ बंटवारा जैसी फिल्म है जो इतिहास के जख्मों को छूने जा रही है, और दूसरी तरफ बॉलीवुड का वो वर्जन भी है जो किसी भी मुश्किल सवाल का जवाब नाच गाने में ढूंढ लेती है। मिर्ची डॉट 20 पर अप नेक्स्ट ऑन नंबर 11 इज चुनरी चुनरी का रीमेक फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है। नंबर 11।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: हाय देयर व्हाट्स अप टेल मी।
1: सर कंप्यूटर में वायरस घुस गया है, क्या करूं?
2: ओ माय गॉड, आज ही डॉक्टर के पास लेके जा और वैक्सीन दिला।
3: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Only on Mirchi. It's hot. Number 10.

जाइए सजना फ्रॉम धुरंधर बाय जैस्मिन सैंडलर्स। और जब भी मिर्ची टॉप 20 पर कोई नया गाना आता है, मेरा प्रोसेस बहुत सिंपल होता है। पहले ऑडियो, सिर्फ ऑडियो, आंखें बंद करके। अगर गाना वहां काम कर गया तो फिर वीडियो देखने का मन करता है, और यही मैंने किया विद अ सॉन्ग फ्रॉम वेलकम टू द जंगल जिसका नाम है ऊंचा लंबा कद फॉरएवर। और मुझे मानना पड़ेगा, विक्रम मॉन्ट्रोज ने इस रिक्रिएशन को एक इज्जत दी है। गाने में एनर्जी है, बीट एडिक्टिव है, और कम से कम ये अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वीडियो देखते ही एक और ख्याल आया यार, हम बॉलीवुड में अक्सर चेहरे याद रखते हैं लेकिन आवाजें भूल जाते हैं। और जो ओरिजिनल वाला ऊंचा लंबा कद है, उसकी बात जब होती है तो लोगों को कटरीना कैफ याद आती है, अक्षय कुमार याद आते हैं, लेकिन उस गाने के असली आर्किटेक्ट आनंद राज आनंद। और शुक्र है कि इस नए वर्जन में उनकी आवाज को रिटेन किया गया है, वही आनंद राज आनंद जिन्होंने हमें दिए कुछ आइकॉनिक गाने।

0: रोमांस भी, दर्द भी और डांस फ्लोर भी। कितने कंपोजर्स ये रेंज क्लेम कर सकते हैं? मोस्ट ऑफ देम वर चार्ट बस्टर्स। और हाँ, एक बात और है, दिशा पाटनी अपनी जगह एक स्टार है, लेकिन कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं होते, वो किसी एक परफॉर्मर की याद के साथ परमानेंटली लॉक हो जाते हैं। और ऊंचा लंबा कद, वेल वो कटरीना कैफ के नाम पर रजिस्टर्ड है। नंबर 9 पर डेब्यू हो रहा है इस गाने का, ऊंचा लंबा कद, फॉर एवर फ्रॉम वेलकम टू द जंगल।
1: नंबर 9।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची।
2: हेलो
3: हेलो सुनील जी।
2: हाँ जी
3: सुनील जी, पेट्रोल पंप से बोल रहा हूँ सर। कंग्रेचुलेशंस, आप लकी विनर हैं।
2: किस चीज के जी सर?
3: सर आपका 20 लीटर पेट्रोल निकला है बिल्कुल फ्री। मैं तो सोच रहा था बड़े खुश हो जाएंगे क्योंकि पेट्रोल के
2: वेरी गुड यार।
3: तो सर ये आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको फिल कराना होगा, भरवाना होगा अपनी गाड़ी में।
2: ठीक है। अच्छा एक बात तो बताइए सर जी।
3: हाँ जी।
2: इसके क्या पैसे ऐसे देने पड़ेंगे कुछ?
3: नहीं सर, पैसे कोई नहीं, कोई पैसा नहीं।
2: कंडीशन वगैरह?
3: नहीं सर, कोई कंडीशन नहीं है। पुराने ग्राहक है आप, ऐसे कैसे कंडीशन रख लेंगे?
2: तो ठीक है, ग्राहक पुराने ग्राहक, कोई आदमी थोड़ा अपना समझ के कहते हैं ना, अपने कोई ज्यादा।
3: बस सर बिल्कुल फ्री है, पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे। एक छोटा सा काम करना पड़ेगा।
2: क्या?
3: पुराना लाइए नया ले जाइए।
2: क्या भैया पुराना क्या लाऊं भाई?
3: पुराना पेट्रोल लाओ नया ले जाओ सर, बस यही है। और वो भी आप ही का निकला है।
2: क्या बात हुई, पुराना कहाँ से लाऊं?
3: सर पुराना जो आपने
2: पुराना हो तो जल के वो खत्म कर दिया हो तो
3: सर जो आपने पुराना यूज किया होगा वो तो लाना पड़ेगा ना आपको।
2: धुआं में कहाँ से इकट्ठा करूँ?
3: पहले तो आप बड़े दांत फाड़ रहे थे जब मैंने आपसे कहा 20 लीटर फ्री पेट्रोल है। वाह वाह जी वाह वाह, थैंक यू। अब मैं आपसे कह रहा हूँ
2: पेट्रोल मिल गया तो मुझे बड़ी अच्छी बात है।
3: अरे अरे तो ये क्या
2: पुराना कहाँ से लाऊं?
3: पुराना आपको लाना पड़ेगा। ये भी मैं पुराना भी वैसे हर वक्त रोते रहते हैं पेट्रोल के पैसे बढ़ गए बढ़ गए। हम फ्री दे रहे हैं तो ला के नहीं दे सकते पुराना? यार कमाल कर रहे हैं आप।
2: पेट्रोल फालतू का। अच्छा। पुराना लाओ नया ले जाओ, ये ले जाओ।
4: अरे मेरी बात सर जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। अगर आप पुराना ले भी आए तो भी आपको 20 लीटर पेट्रोल फ्री नहीं मिलेगा। हाँ मुर्गा खाने को जरूर मिल सकता है। सर मजा आ गया आपसे बात करके, मतलब आपके गुस्से से डर गया मैं।
0: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

यार कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ गाने नहीं गाती, वो हमारी जिंदगी के अलग अलग चैप्टर्स में साथ चलती रहती हैं। सुनिधि चौहान उनमें से एक है, अरिजीत सिंह भी उनमें से एक है। लेकिन कितनी इंटरेस्टिंग बात है, जब अरिजीत अपना पहला बॉलीवुड गाना गा रहा था तब तक सुनिधि एक पूरी जनरेशन का साउंड ट्रैक बन चुकी थी। मुझे आज भी मस्त का वो गाना याद है, वे आई हर्ड सुनिधि फॉर द फर्स्ट टाइम एंड माई माइंड वॉज ब्लोन। रुकी रुकी थी जिंदगी, एक आवाज जो अलग थी, नई थी और बिल्कुल सुनिधि चौहान थी। फिर सालों बाद आए अरिजीत सिंह और धीरे धीरे वो आवाज बन गए। इसके बिना बॉलीवुड का रोमांस अधूरा लगने लगा। और जब ये दोनों एक ही गाने में मिलते हैं तो कुछ खास हो जाता है। और आज तुझको में आप उस जादू को महसूस कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए उनकी वोकल केमिस्ट्री का पीक आज भी ये गाना है।

0: सुनिए उस पल को। ना अरिजीत आगे निकलने की कोशिश करते हैं, ना सुनिधि, दोनों एक दूसरे को एलिवेट कर रहे हैं, और शायद इसी को म्यूजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। लेकिन अब मिर्ची टॉप 20 पर गाना नंबर 7, फिर वही आवाज, एक और एहसास। अरिजीत सिंह इज सोलो राइट नाउ, दिस इज गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर।
1: नंबर 7।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची स्टोरीज।
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
4: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
5: मिर्ची इट्स हॉट
6: अर्ज किया है
7: इरशाद। इरशाद

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5 and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply. मिष्टी दोई, संगीत और मीठी बोली के शहर में अब खून की होली शुरू हो चुकी है।
1: यहाँ हर मुस्कुराहट के पीछे एक राज है और क्राइम का राज

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot. Number 5.

ये गाना खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होता, आप सोचते हो एक और बार सुनूंगा और फिर खुद को चौथी पांचवी बार प्ले करते हुए पकड़ लेते हो। और मुझे लगता है कि उसका एक बहुत बड़ा रीजन है इसका सिंगर राघव चैतन्य, क्योंकि कुछ सिंगर्स सुर में गाते हैं, कुछ सिंगर्स पर्सनालिटी में गाते हैं और राघव दूसरी कैटेगरी में आता है। सारी परतें हटा के सुनो, सिर्फ राघव की आवाज सुनो। पड़े अगर तेरे

देखिए कैसे वॉइस को यूज कर रहा है ये लड़का, कभी ब्रीजी है, कभी फ्लर्टेशियस है, कभी ऑलमोस्ट कॉन्वर्सेशनल है, जैसे आपसे बात कर रहा हूं। गाना सिर्फ गा नहीं रहा, परफॉर्म कर रहा है, और शायद इसलिए प्रीतम दा बार बार उसकी तरफ लौट रहे हैं। इन एनिमल, इन मेट्रो, इन दिनों, इन कॉकटेल, इनफैक्ट राघव ने तो कई बार प्रीतम दा के गाने कवर भी किए अपने वीडियोज में।

0: dude, it sounds so lovely. Pattern साफ नजर आ रहा है. मिर्ची टॉप 20 पर नंबर 3 पर है तू ही दिसदा फ्रॉम भूत बंगला, जो कोविड के बाद अक्षय कुमार की सबसे कामयाब फिल्म है. लेकिन हम राघव चैतन्य की इस ट्रेन से उतरने नहीं वाले, क्योंकि माशूका से पहले एक और गाना था जिसने सबको पूछने पर मजबूर कर दिया, यार ये सिंगर कौन है. अब पिक ऑफ द वीक इज फ्रॉम एक विलन रिटर्न्स. दिल इश्क तो है बट साथ में दर्द भी.
1: पिक ऑफ द वीक.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: विद्या बालन, आपने 40 से ज्यादा फिल्में कर ली, 2014 में पद्मश्री कमा लिया, इतने सारे इयर्स ऑफ अचीवमेंट के बाद, डू यू रिमेम्बर द फर्स्ट सॉन्ग यू फिल्म्ड फॉर?
4: ऑफ कोर्स, कस्तू मजा परिणीता से, और शिलीगुड़ी में शूट हुई थी इस गाने की और बहुत मजा आया था। इतने लोग थे और पीरियड फिल्म है, लोग स्कूटरों पे और मोटर बाइक्स पे गाड़ियों में आ रहे थे एंड वी कुडंट हैव दैट इन द शॉट। सो हम लोग ट्रेन पे थे और हम लोग ट्रेन एक तरफ लेके जाते, फिर पता चलता कि जब मॉनिटर देखते तो पता चलता कि ये गाड़ियाँ आ गई है, लोग आ गए हैं गाने में, तो फिर से हम लोग रिवर्स में आ जाते, फिर शूट होता। एंड इट्स माय फर्स्ट सॉन्ग, इट्स आल्सो माय फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम परिणीता।
3: ओह, दैट्स अ टफ वन विद्या बालन। परिणीता का हर गाना इतना गोल्डन है, इट्स टफ टू चूज अ फेवरेट। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Hardy Sandhu and Kiran Bajwa have got a hit song to their credit. Wow! And अब जब है जवानी तो इश्क होना है थिएटर्स में एक हफ्ता बिता चुकी है तो मुझे लगता है कि फिल्म से ज्यादा इंटरेस्टिंग है इसका म्यूजिक क्योंकि उस एल्बम में दो गाने ऐसे हैं जो पहले से ही सुपर हिट्स बन चुके थे चुनरी चुनरी एंड देन इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग जो बीवी नंबर वन में था इश्क चांदी है इश्क सोना है सोना बाबा सोना सोना सोना वेल मुझे लगता है कि बॉलीवुड का म्यूजिक एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहा है आज के कंपोजर्स को शायद लगता है कि लिसनर 3 सेकंड में शायद बोर हो जाएगा इसलिए हर दूसरे सेकंड कुछ ना कुछ हो रहा होता है गाने में नई बीट नया ड्रॉप नया इफेक्ट नई लेयर और फिर गाना खत्म होने के बाद आपको गाना याद ही नहीं रहता आप जरा ओरिजिनल वाला इश्क सोना है सुनिए
1: इश्क़

0: यार क्या था इस गाने में? कुछ खास नहीं, और शायद वही इसकी खासियत है। मेलोडी को सांस लेने की जगह मिली, हुक को बैठने की जगह मिली। गाना आपका अटेंशन डिमांड नहीं कर रहा था, गाना आपको साथ ले जा रहा था। हर गाना लाउड होकर याद नहीं रहता, कुछ गाने चुप रहकर भी याद हो जाते हैं, लेकिन इस वक्त बॉलीवुड में एक गाना इतना लाउड है कि उसके सामने सब पीके पड़ रहे हैं। 17 हफ्ते एट द नंबर वन पोजीशन इज नो जोक एंड आई स्टिल फाइंड इट अनबिलीवेबल। और अब तो ओटीटी पर भी हुड़दंग मचा रखा है, मैडनेस नजर आ रही है। दिस इज शरारत बाय मधुवंती बागची, जैस्मिन सैंडलर्स फ्रॉम धुरंधर।
1: नंबर वन।

0: और बस इसी के साथ एक और एपिसोड, एक और काउंटडाउन और बॉलीवुड की एक और कहानी खत्म होती है। कुछ गाने इस हफ्ते चार्ट्स पर चढ़े, कुछ हिट कर गए और कुछ ने हमें याद दिलाया कि अच्छा म्यूजिक कभी पुराना नहीं होता। बट टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, अपनी प्लेलिस्ट को जिंदा रखिएगा और अपनी यादों को भी। दिस इज सुरेन, ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन,
3: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
2: अरे यार, मैं तो आज मेरा आईडी कार्ड ही भूल गया हूँ, कॉलेज में कैसे जाऊँ?
3: अरे गोचू, आईडी कार्ड ही भूला है ना, अंदर जाने का रास्ता तो पता ही होगा ना, तो चला जाना।
4: साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में बज गए शाम के छह एंड यू एंजॉयिंग क्लब मिर्ची.
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, फास्टन योर सीट बेल्ट्स एंड वेट फॉर द नो स्मोकिंग साइन. वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो
3: ऑन अ राइड. क्लब मिर्ची विद ऑयल होम टेका एंड

नमस्कार और गुड लक उन सबको जो मंडे का टेंशन सैटरडे रात को ही लेके घूम रहे हैं। ये है क्लब मिर्ची, जहाँ प्लेलिस्ट हॉट है, वाइब्स हॉटर है और आपके एक्स के एक्सक्यूजेस सबसे ज्यादा आउटडेटेड है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑल ऑन द गो विद यू। और अगले कुछ घंटों तक हम पार्टी करेंगे इतना जोर से कि पड़ोसी भी सोचे इनका वीकेंड पैकेज कौन सी कंपनी देती है। चलिए वॉल्यूम बढ़ाइए और शर्म घर पे छोड़ दीजिए। लेट्स गो।

और वाईफाई में एक सिमिलैरिटी है, दोनों जब स्ट्रॉन्ग होते हैं तो जिंदगी ऑटोमेटिकली बेटर लगती है। ऑल्सो विद क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका।

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: हेलो नवनीत
2: yeah.
3: नवनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ।
2: हाय नवेद,
3: क्या हाल चाल है?
2: बढ़िया है।
3: आपने मैसेज किया था अपने फादर का मुर्गा बनवाने के लिए।
2: हाँ हाँ हाँ, बन गया क्या?
3: यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुमने किस आदमी का नंबर दिया यार मुझे?
2: हाँ?
3: सोच समझ के नंबर देते हो नहीं देते हो? मैंने उनको फोन किया, वो मुझ पे भड़क रहे हैं यार शुरू में ही।
2: या, मैं तो अपने पापा का ही नंबर दिया।
3: पापा का नंबर, नाम क्या है यार पापा का?
2: मिस्टर दिलीप।
3: उनसे ही मेरी बात हुई है यार। मैंने माना, मजाक अपनी जगह है, मुर्गा बनाता हूँ, मैं भी हंसता हूँ, तुम्हें भी हंसाता हूँ, लेकिन यार ये थोड़ी है उसका नाजायज फायदा उठा लो तुम।
2: मैं क्या कुछ गलत
3: बोल दिया यार? मैं मतलब यहाँ पे इसलिए आता हूँ कि मैं गालियाँ सुनूं यार?
2: अब ऐसी बात क्या
3: ऐसी ऐसी बात क्या हो गई? अपने फादर से पूछो यार जाके। नहीं, अपने फादर से क्यों नहीं पूछते तुम जाके?
2: अब मैं क्या
3: पूछूं यार? तुम्हें पहले कहना चाहिए था मुझसे कि उन्हें गुस्सा आता है, वो ज्यादा भड़क जाते हैं यार।
2: अब गुस्सा तो सभी को आता है, ठीक से बात कर ले।
3: तुम मुझे बताओगे कि मैं कैसे बात कर लेता यार? नवनीत कमॉन यार, ऐसे नहीं होता है। मैंने माना कि चलो एक शो है, मुर्गा बनाते हैं उसमें, ये थोड़ी यार क्या तुम उठा के किसी का भी नंबर दे दो, किसी का भी मुर्गा बनवा लो।
2: अब कुछ यानी कुछ ज्यादा पापा ने बोल दिया तो
3: अरे तो
2: तरफ से मैं माफी मांग।
3: माफी मांगने से क्या होता है यार? ऐसी मैं माफी मांग रहा था उनसे, मैंने माफी मांगी है 50, वो नहीं मान रहे। तुमने यार पता नहीं उठा के क्या समझ रखा है मुझे।
2: अब मैंने क्या, आपने बोला कि मुर्गा बनाना है, SMS कर दो, मैंने कर दिया।
3: तुम मुझे क्या पता था यार तुम अपने ऐसे फादर का नंबर दे दोगे यार?
2: ऐसे फादर क्या, मेरे तो एक ही फादर है, मैं ढूंढ के लाऊंगा।
3: अरे तो यार अब तुम उल्टे मुझसे बात कर रहे हो। एक तो पहले बाप की सुनिए, अब मैं बेटे की सुन लो। यार तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया क्या?
2: मेरा खराब नहीं हो गया, मुझे लग रहा है आप ही का थोड़ा हो गया है।
3: इस वक्त तुम्हारा ही मुर्गा बन रहा है, मेरे तुम्हारी फादर से अभी तक बात भी नहीं। ऐसे अच्छे काम होते रहते हैं यहाँ पर। वैसे तुम्हारे फादर के वाकई में गुस्से वाले हैं?
2: नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, कभी कभी तो गुस्सा कर ही देते हैं।
3: चलो एक बार प्यार से मेरे साथ उनकी तरफ से बोल दो।
2: कुकड़ुकू
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

to Club Mirchi with DJ Richard and Mirchi on Yontika. This is the sound of the future. अगर आप dance floor पे नहीं हो तो कम से कम imagination में तो हो, right? और अगर अभी भी sofa पे बैठे हो तो congratulations, आप officially furniture के साथ emotionally attached हो चुके हो. Get up, people!

0: का रिप्लाई देना जरूरी नहीं, कभी कभी सीन भी एक कंप्लीट पैराग्राफ होती है।
1: डीजे मिर्ची और योंतिका आपके साथ और क्लब मिर्ची।

0: लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
1: मिर्ची, इट्स हॉट। मिष्टी दोई, संगीत और मीठी बोली के शहर में अब खून की होली शुरू हो चुकी है।
2: यहाँ हर मुस्कुराहट के पीछे एक राज है और क्राइम का रंग अब ब्लैक हो चुका है। मैं आ रही हूँ इनके खेल खत्म करने।
1: संगीत की धुन अब चीखों में बदलेगी। Officer Brown is back to kill the devil. The dark side of Kolkata awaits. Brown, streaming from 12th June, only on Z5.
3: अमुशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
4: और एड ब्रेक भी, मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार बार बार। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot. Say whoa!

है क्लब मिर्ची में वीकेंड का असली रूल सिंपल है, कैलोरीज काउंट मत करो, रिग्रेट्स मंडे को शेड्यूल करो, और जो लोग मैं सिर्फ एक गाना सुन के सो जाऊंगा बोलते हैं उन पे कभी भरोसा मत करो। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन विद यू टुनाइट ऑन क्लब मिर्ची।

मूड इतना डांस करो कि स्मार्ट वॉच भी कंफ्यूज हो जाए कि वर्कआउट चल रहा है या सेलिब्रेशन। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयो विद योर क्लब मिर्ची।

कुछ लोग रेड फ्लैग्स इग्नोर करते हैं, हम बस बेसलाइन फॉलो करते हैं। लाइफ थोड़ी सिंपल रखो यार, विद क्लब मिर्ची एंड डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयो अंतिका।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: श्रेयस तलपड़े आपकी सबसे पहली हिंदी फिल्म इकबाल थी, लेकिन क्या आपको याद है सबसे पहला गाना आपने कौन सा शूट किया था?
4: एक्चुअली टेलीविजन सीरियल का हमने एक टाइटल सॉन्ग शूट किया था, तो आई थिंक दैट प्रोबब्ली वाज द वन व्हिच वाज माय फर्स्ट सॉन्ग एज सच. मराठी गाना था वो, टाइटल था सीरियल का बेधुंद मनाची लहरी. इट वाज लाइक बेधुंद मनाची लहर लहरी चा होती लाटा लाटा होता कहर किनारा शोधती हजार वाटा.
3: श्रेयस, यू आर नॉट ओनली अ गुड एक्टर, यू आर अ फाइन सिंगर. मुझे लगता है आपको ये वाला ऑप्शन अब एक्सप्लोर करना शुरू कर लेना चाहिए. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड बोल्डाल.
2: बॉलीवुड, बॉलीवुड, बॉलीवुड बोल्डाल. ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट. अर्ज किया है
5: इरशाद, इरशाद.

मिर्ची पे स्वागत है दोबारा लाइव। अगर आपको मिक्स्ड सिग्नल्स दे रही है तो कोई बात नहीं, हम मिक्स्ड ट्रैक्स दे रहे हैं और हमारे ट्रैक्स कम से कम कमिटमेंट तो निभाते हैं। दिस इज क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए।
0: सर, आई डोंट नो व्हाट टू डू आफ्टर कॉलेज, आप बताओ ना मुझे क्या करना चाहिए।
1: अरे तो सिंपल है ना, फटाफट कर जा, मम्मी इंतजार कर रही होगी।

वेलकम बैक बॉडी पीपल। कुछ लोग थेरेपी अफोर्ड करते हैं, कुछ लोग शॉपिंग करते हैं और हम बेस ड्रॉप का वेट करते हैं। हर किसी का हीलिंग प्रोसेस अलग होता है बॉस, इसीलिए क्लब मिर्ची जा रही है विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयो दिका।

मेरी टिप, अपने दोस्त को कभी मत बोलना मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। ये दुनिया के सबसे फिक्शनल स्टेटमेंट्स में से एक है। डीजे रिचर्ड मिर्ची और योन्तिका आपके साथ ऑन क्लब मिर्ची।

मिर्ची पे फिर से स्वागत। जो लोग बोलते हैं मुझे पार्टी पसंद नहीं है, उनको बस सही प्लेलिस्ट नहीं मिली अब तक, या फिर उनके दोस्त बहुत बोरिंग है, और दोनों पॉसिबिलिटीज इक्वली डेंजरस है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योर थिंग विद यू टुनाइट।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
4: भाई, इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: लेडीज एंड जेंटलमैन,

अगर आपका वीकेंड प्लान सिर्फ खाना सोना और ओटीटी था तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आज रात हम आपके लिविंग रूम को अनऑफिशियल नाइट क्लब डिक्लेयर करते हैं। डीजे मिर्ची ऑन क्लब मिर्ची।

डीजे रिचर्ड की बीट्स और आपकी वीकेंड एनर्जी का कॉम्बो डेंजरस है। मजेदार मोमेंट्स के लिए फॉलो करो @DJRichardOfficial and @OyOntika AYANTIKA और देखो असली पार्टी का सिलेबस।

Welcome back to Club Mirchi with DJ Richard and Mirchi Oyontika. This is the sound of the future. अगर आप dance floor पे नहीं हो तो कम से कम imagination में तो हो, right? और अगर अभी भी sofa पे बैठे हो तो congratulations, आप officially furniture के साथ emotionally attached हो चुके हो. Get up, people!

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: जब भी ताल फिल्म देखती हूँ ऐश्वर्या राय बच्चन के पीछे एक क्यूट लड़का दिखता है और वो कौन है शाहिद कपूर। बट शाहिद इफ आई हैड टू आस्क यू अबाउट योर फिल्म जर्नी एंड योर फर्स्ट सॉन्ग कौन सा था वो?
4: मेरा पहला गाना था इट वाज इन इश्क इश्क ऑब्वियसली द फर्स्ट सॉन्ग वाज दिस सॉन्ग वी डिड इन अ कैंटीन कॉल्ड लव लव लव करो वेयर ऑल द गाइस आर ट्राइंग टू इंप्रेस द वुमेन।
3: शाहिद व्हाट अ लवली डाइव इन नॉस्टैल्जिया। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
2: Only on Mirchi. It's hot.
5: Ladies and gentlemen.

नहीं नहीं पीने के बाद सिर्फ डांस करो, बातें नहीं. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका एंड पीपल हु स्टिल वांट टू गिव लेक्चर्स आफ्टर ड्रिंक्स. ये है असली इमोशनल अत्याचार.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
2: मेरे बॉस की सारी गलती की ओनरशिप हर बार मुझे ही लेनी पड़ती है, क्या करूं?
1: अरे तो बॉस को बोल दो कि ये कंपनी भी उनकी एक गलती है।
3: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस।
4: मिर्ची घड़ी में रात

वापस आ गए हैं क्लब मिर्ची में। वीकेंड का असली रूल सिंपल है, कैलोरीज काउंट मत करो, रिग्रेट्स मंडे को शेड्यूल करो, और जो लोग मैं सिर्फ एक गाना सुन के सो जाऊंगा बोलते हैं उन पे कभी भरोसा मत करो। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योर थिंग आउट विद यू टुनाइट ऑन क्लब मिर्ची।

ड्राइव स्मार्ट। अगर स्टीयरिंग व्हील हाथ में है तो फोन को वेकेशन पे भेज दो। एक नोटिफिकेशन किसी की डेस्टिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। ओके, क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोंतिका।

लगा के सुन रहे हैं, वॉल्यूम इतना मत बढ़ाओ कि मम्मी की आवाज और ट्रेन की हॉर्न दोनों म्यूट हो जाए। म्यूजिक एंजॉय करो, हियरिंग भी बचा के रखो। क्लब मिर्ची विद डीजे मैच्योर्ड एंड मिर्ची ऑयल ओन्टेका।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
2: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
3: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6
6: FM Mirchi 1. It's hot.
7: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go
8: on a ride.
0: Club Mirchi.

का रिप्लाई देना जरूरी नहीं, कभी कभी सीन भी एक कंप्लीट पैराग्राफ होती है। डीजे विचैतन मिर्ची और योनिका आपके साथ ऑन क्लब मिर्ची।

0: कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।
3: क्लब मिर्ची विद ऑयंतिका एंड डीजे रिचर्ड, ओनली

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।

0: मिर्ची पे फिर से स्वागत। जो लोग बोलते हैं मुझे पार्टी पसंद नहीं है, उनको बस सही प्लेलिस्ट नहीं मिली अब तक, या फिर उनके दोस्त बहुत बोरिंग है, और दोनों पॉसिबिलिटीज इक्वली डेंजरस है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योर थिंग विद यू टुनाइट।
1: एस फॉर मनी एंड गेट एडवाइस, एस फॉर एडवाइस गेट मनी ट्वाइस। आई एम फ्रॉम द डर्टी बट दैट चिको नाइस, यॉल कॉल इट अ मोमेंट, आई कॉल इट लाइफ।

कुछ लोग रेड फ्लैग्स इग्नोर करते हैं, हम बस बेसलाइन फॉलो करते हैं। लाइफ थोड़ी सिंपल रखो यार, विद क्लब मिर्ची एंड डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योर दिखा।

0: They want them and I'm selling y'all. They wanted the house. Coming with the new funk, funk, funk, funk, funk, funk, funk, funk, funk, funk. I like it.
1: रील्स बोरिंग लग रहा है तो थोड़ा डांस करो और हमें टैग भी करो डीजे रिचर्ड ऑफिशियल कंटेंट भी बनेगा और कार्डियो भी डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन क्लब मिर्ची।

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: हेलो नवनीत
2: या
3: नवनीत, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ।
2: हाय नवेद,
3: क्या हाल चाल है?
2: बढ़िया है।
3: आपने मैसेज किया था अपने फादर का मुर्गा बनवाने के लिए।
2: हाँ हाँ हाँ, बन गया क्या?
3: यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुमने किस आदमी का नंबर दिया यार मुझे?
2: हाँ?
3: सोच समझ के नंबर देते हो नहीं देते हो? मैंने उनको फोन किया, वो मुझ पे भड़क रहे हैं यार शुरू में ही।
2: या मैं तो अपने पापा का ही नंबर दिया।
3: पापा का नंबर, नाम क्या है यार पापा का?
2: मिस्टर दिलीप।
3: उनसे मेरी बात हुई है यार? मैंने माना, मजाक अपनी जगह है, मुर्गा बनाता हूँ, मैं भी हंसता हूँ, तुम्हें भी हंसाता हूँ, लेकिन यार ये थोड़ी है उसका नाजायज फायदा उठा लो तुम।
2: मैं क्या कुछ
3: गलत बोल दिया यार? मैं मतलब यहाँ पे इसलिए आता हूँ कि मैं गालियाँ सुनूँ यार?
2: अब ऐसी बात क्या
3: ऐसी हो ऐसी बात क्या हो गई? अपने फादर से पूछा यार जाके? नहीं, अपने फादर से क्यों नहीं पूछते तुम जाके?
2: अब मैं क्या
3: पूछूं यार? तुम्हें पहले कहना चाहिए था मुझसे कि उन्हें गुस्सा आता है, वो ज्यादा भड़क जाते हैं यार।
2: अब गुस्सा तो सभी को आता है, ठीक से बात कर ले।
3: तुम मुझे बताओगे कि मैं कैसे बात कर लेता यार? नवनीत कमॉन यार, ऐसे नहीं होता है। मैंने माना कि चलो एक शो है, मुर्गा बनाते हैं उसमें, ये थोड़ी यार क्या तुम उठा के किसी का भी नंबर दे दो, किसी का भी मुर्गा बनवा लो।
2: अब कुछ ज्यादा पापा ने बोल दिया तो
3: अरे तो
2: तरफ से मैं माफी मांग,
3: माफी मांगने से क्या होता है यार? ऐसी मैं माफी मांग रहा था उनसे, मैंने माफी मांगी है 50, वो नहीं मान रहे। तुमने यार पता नहीं उठा के क्या समझ रखा है मुझे।
2: अब मैंने क्या, आपने बोला कि मुर्गा बनाना है, SMS कर दो, मैंने कर दिया।
3: तो मुझे क्या पता था यार तुम अपने ऐसे फादर का नंबर दे दोगे यार?
2: ऐसे फादर क्या, मेरे तो एक ही फादर है, मैं ढूंढ के लाऊंगा।
3: अरे तो यार अब तुम उल्टे मुझसे बात कर रहे हो। एक तो पहले बाप की सुनिए, अब मैं बेटे की सुन लो। यार तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया क्या?
2: मेरा खराब नहीं हो गया, मुझे लग रहा है आप ही का थोड़ा हो गया।
3: इस वक्त तुम्हारा ही मुर्गा बन रहा है, मेरी तुम्हारी फादर से अभी तक बात भी नहीं। ऐसे अच्छे काम होते रहते हैं यहाँ पर। वैसे तुम्हारे फादर के वाकई में गुस्से वाले हैं?
2: नहीं, ऐसा तो नहीं है, कभी कभी तो गुस्सा कर ही देते।
3: चलो एक बार प्यार से मेरे साथ उनकी तरफ से बोल दो
2: कुकड़ुकु।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

आ गए हैं क्लब मिर्ची में। वीकेंड का असली रूल सिंपल है, कैलोरीज काउंट मत करो, रिग्रेट्स मंडे को शेड्यूल करो, और जो लोग मैं सिर्फ एक गाना सुन के सो जाऊंगा बोलते हैं उन पे कभी भरोसा मत करो। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन विद यू टुनाइट ऑन क्लब मिर्ची।

चटकी बीट्स और आपकी वीकेंड एनर्जी का कॉम्बो डेंजरस है। मजेदार मोमेंट्स के लिए फॉलो करो @DJ Richard Official and @Oyontika Ayantika और देखो असली

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
4: भाई, इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: लेडीज एंड जेंटलमैन,

वापस आ गए हैं क्लब मिर्ची में। वीकेंड का असली रूल सिंपल है, कैलोरीज काउंट मत करो, रिग्रेट्स मंडे को शेड्यूल करो, और जो लोग मैं सिर्फ एक गाना सुन के सो जाऊंगा बोलते हैं उन पे कभी भरोसा मत करो। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योर थिंग आउट विद यू टुनाइट ऑन क्लब मिर्ची।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
2: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
3: बहुत कुछ होगा।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
6: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।
0: क्लब मिर्ची

लव मिर्ची पे स्वागत है दोबारा। लाइफ अगर आपको मिक्स सिग्नल्स दे रही है तो कोई बात नहीं, हम मिक्स ट्रैक्स दे रहे हैं और हमारे ट्रैक्स कम से कम कमिटमेंट तो निभाते हैं। दिस इज क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंटिका।

drive smart. अगर steering wheel हाथ में है तो फोन को वेकेशन पे भेज दो. एक नोटिफिकेशन किसी की डेस्टिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती. ओके, क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका.

कुछ लोग थेरेपी अफोर्ड करते हैं, कुछ लोग शॉपिंग करते हैं, और हम बेस ड्रॉप का वेट करते हैं। हर किसी का हीलिंग प्रोसेस अलग होता है बॉस, इसीलिए क्लब मिर्ची जा रही है विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयो देखा।

यस दोस्तों, आज की क्लब मिर्ची पार्टी यही रैप करते हैं। डांस मूव से सेव कर लो, एनर्जी रिचार्ज कर लो और मंडे को याद दिलाओ कि वीकेंड अभी ऑफिशियली खत्म नहीं हुआ है, मेमोरीज बाकी है। मैं हूँ ओयोंतिका, मिलेंगे फिर अगले सेशन में। डीजे रिचर्ड भी होंगे आपके साथ, तब तक मस्त रहो, सेफ रहो और लाइफ को प्लेलिस्ट की तरह शफल मोड पे जियो। टाटा।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए।
0: सर, आई डोंट नो व्हाट टू डू आफ्टर कॉलेज, आप बताओ ना मुझे क्या करना चाहिए।
1: अरे तो सिंपल है ना, फटाफट कर जा, मम्मी इंतजार कर रही होगी।

Rigid. नमस्कार और गुड लक उन सबको जो मंडे का टेंशन सैटरडे रात को ही लेके घूम रहे हैं। यह है क्लब मिर्ची, जहाँ प्लेलिस्ट हॉट है, वाइब्स हॉटर है और आपके एक्स के एक्सक्यूजेस सबसे ज्यादा आउटडेटेड है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका विथ यू, और अगले कुछ घंटों तक हम पार्टी करेंगे इतना जोर से कि पड़ोसी भी सोचे इनका वीकेंड पैकेज कौन सी कंपनी देती है। चलिए वॉल्यूम बढ़ाइए और शर्म घर पे छोड़ दीजिए। लेट्स

वीकेंड और वाईफाई में एक सिमिलैरिटी है, दोनों जब स्ट्रॉन्ग होते हैं तो जिंदगी ऑटोमेटिकली बेटर लगती है. ऑल्सो विथ क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iskabana, uskabana, sakabana. Rambala. Burga, burga. La vidva la burga. Mirchi, burga.
3: Hello.
4: Is that Sanjeev?
3: Yeah, I'm speaking.
4: Hi Sanjeev, I am Atul calling from...
3: Okay.
4: संजीव आपने 3 राउंड्स क्लियर कर लिए हैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के लिए. ये आपका फाइनल राउंड है जिसमें हम कैंडिडेट के पेशेंस चेक करते हैं, उसमें कितने पेशेंस है, कितना इत्मीनान है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि इस तरह की जॉब है. तो आपको लगता है कि आप में पेशेंस हैं सारे?
3: पेशेंस तो है, मैंने जो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया हुआ उसमें भी मेंशन है ये चीज.
4: ओके.
3: कई तरह के कस्टमर्स होते हैं, उनको सेटिस्फाइड करने हमारा काम है.
4: कितने साल जॉब करी है आपने इससे पहले?
3: मैंने 2 साल काम किया एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव.
5: चुप कर. 2 साल काम किया एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव.
3: सॉरी सर.
4: कैरी ऑन रखिए, आप बताइए मुझे अपने बारे में. ये मैं आपके पेशेंट चेक कर रहा हूँ. हाँ बताइए. भड़कता हुआ कस्टमर आता है, कॉल करता है, तो उसको किस तरह हैंडल करते थे?
3: कस्टमर्स हैं, जब मैंने आपको बताया ना, मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है. इस टाइप के कई कस्टमर्स आते थे जिनको हम बहुत ही कूलली, बहुत पेशेंट के साथ उनको सेटिस्फाइड.
5: बकवास बंद कर, बकवास बंद कर. कूलली तू करता था, कूलली दांत अंदर कर.
3: हम करते थे सेटिस्फाइड कर.
5: चुप कर, बकवास बंद कर, बकवास बंद कर.
3: जैसे आप बोल रहे हो ना, ऐसी ज्यादा गुस्सा दिखाते हैं वो लोग.
4: अच्छा, इससे ज्यादा दिखाते. अच्छा मुझे ये बताइए कि मान लीजिए कोई कस्टमर ऐसा है जो कि मान ही नहीं रहा आपकी बात और वो डांटे जा रहा है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए?
3: सर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पहले हमारी बात सुने.
5: शराब
3: बोलते हैं लोग.
5: शराब अब टेस्ट तुम्हारा खत्म हो चुका. कोई पेशेंस चेक नहीं कर रहा. अब ये असलियत कह रहा हूँ, तुम्हें बोलने की तमीज है नहीं यार.
3: अभी तक
5: पेशेंस चेक कर रहे, लेकिन वाकई में तुझे तमीज ही नहीं है. मोबाइल के कस्टमर केयर में जॉब करने के लिए कह रहा है करूंगा. मोबाइल पकड़ा कभी हाथ में?
3: बोल
5: जॉब करूंगा, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनूंगा. कस्टमर इंसान तो बन जा पहले यार, इंसान बना नहीं है.
3: खुद को देखा आपने कभी?
4: संजीव कोई इंटरव्यू की कॉल नहीं है. मुझे पता चला तुमने 3 राउंड दे चुके हो. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बना रहा था.
3: ओके.
4: और लेकिन तुम पूरी तरह क्वालिफाई कर गए हो ये राउंड. तुम्हें जॉब मैं दूंगा. okay. तुम मेरे शो में आके बैठो. मुझ पे भी कभी कभी डांट पड़ती है.
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
7: 89.6.
8: लेडीज एंड जेंटलमैन,
6: Club Mirchi.

back to Club Mirchi with DJ Richard and Mirchi Oyontika. This is the sound of the future. अगर आप डांस फ्लोर पे नहीं हो तो कम से कम इमेजिनेशन में तो हो, राइट? और अगर अभी भी सोफा पे बैठे हो तो कंग्रेचुलेशंस, आप ऑफिशियली फर्नीचर के साथ इमोशनली अटैच्ड हो चुके हो. गेट अप पीपल.

मैसेज का रिप्लाई देना जरूरी नहीं, कभी कभी सीन भी एक कंप्लीट पैराग्राफ होती है। डीजे मिर्ची और योंतिका आपके साथ ऑन क्लब मिर्ची।

0: Richie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
4: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा, जा।
7: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल,
8: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची 1। It's hot.
11: Ladies and gentlemen, we are gonna go.
12: On a ride.
0: Club Mirchi.

वीकेंड का असली रूल सिंपल है, कैलोरीज काउंट मत करो, रिग्रेट्स मंडे को शेड्यूल करो, और जो लोग मैसे पे गाना सुन के सो जाऊंगा बोलते हैं उन पे कभी भरोसा मत करो। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन विद यू टुनाइट ऑन क्लब मिर्ची।

मूड इतना डांस करो कि स्मार्ट वॉच भी कंफ्यूज हो जाए कि वर्कआउट चल रहा है या सेलिब्रेशन। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयो टेक आउट विद योर क्लब मिर्ची।

कुछ लोग रेड फ्लैग्स इग्नोर करते हैं, हम बस बेसलाइन फॉलो करते हैं। लाइफ थोड़ी सिंपल रखो यार, विद क्लब मिर्ची एंड डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयो अंतिका।

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, और वो कौन है? शाहिद कपूर. बट शाहिद, इफ आई हैड टू आस्क यू अबाउट योर फिल्म जर्नी एंड योर फर्स्ट सॉन्ग, कौन सा था वो?
2: मेरा पहला गाना था, इट वॉज इन इश्क विश्क ऑब्वियसली. द फर्स्ट सॉन्ग वॉज दिस सॉन्ग वी डिड इन अ कैंटीन कॉल्ड लव लव लव करो, वेयर ऑल द गाइज आर ट्राइंग टू Impress the women.
1: Shahid, what a lovely dive in nostalgia. Aap sun rahe hain Mirchi, it's hot. Bollywood Bol Dal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bol Dal. Only on Mirchi, it's hot.

मिर्ची पे स्वागत है दोबारा। लाइव अगर आपको मिक्स्ड सिग्नल्स दे रही है तो कोई बात नहीं, हम मिक्स्ड ट्रैक्स दे रहे हैं और हमारे ट्रैक्स कम से कम कमिटमेंट तो निभाते हैं। दिस इज क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका।

0: गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6, 89.6,
1: it's hot.

0: ఎమర్జెన్సీ హెల్ప్ లైన్.
1: मिर्ची हेल्प लाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: अरे यार, मैं तो आज मेरा आईडी कार्ड ही भूल गया हूँ, कॉलेज में कैसे जाऊँ?
1: अरे गोचू, आईडी कार्ड ही भूला है ना, अंदर जाने का रास्ता तो पता ही होगा ना, तो चला जाना.

वेलकम बैक बॉडी पीपल। कुछ लोग थेरेपी अफोर्ड करते हैं, कुछ लोग शॉपिंग करते हैं, और हम बेस ड्रॉप का वेट करते हैं। हर किसी का हीलिंग प्रोसेस अलग होता है बॉस, इसीलिए क्लब मिर्ची जा रही है विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयो देखा।

0: सॉरी डिप, अपने दोस्त को कभी मत बोलना मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ, ये दुनिया के सबसे फिक्शनल स्टेटमेंट्स में से एक है।
1: डीजे रिचर्ड मिर्ची और योनिक आपके साथ हम क्लब मिर्ची।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: हेलो सुनील जी।
2: हाँ जी
3: सुनील जी, पेट्रोल पंप से बोल रहा हूँ। सर कंग्रेचुलेशंस, आप लकी विनर हैं।
2: किस चीज के जी सर?
3: सर आपका 20 लीटर पेट्रोल निकला है बिल्कुल फ्री। मैं तो सोच रहा था बड़े खुश हो जाएंगे क्योंकि पेट्रोल के
2: यार, भी तो, बहुत बड़ी
3: तो सर ये आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको फिल कराना होगा, भरवाना होगा अपनी गाड़ी में।
2: ठीक है, अच्छा एक बात तो बताइए सर जी।
3: हाँ जी,
2: इसी का पैसे ऐसे देने पड़ेंगे कुछ?
3: नहीं सर, पैसे कोई नहीं, कोई पैसा नहीं।
2: कंडीशन
3: नहीं सर, कोई कंडीशन नहीं है, पुराने ग्राहक है, आप ऐसे कैसे कंडीशन रख लेंगे?
2: ठीक है, ग्राहक पुराने ग्राहक को आदमी थोड़ा अपने समझ के कहते ना, अपने कोई ज्यादा।
3: बस सर बिल्कुल फ्री है, पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे, एक छोटा सा काम करना पड़ेगा।
2: क्या?
3: पुराना लाइए, नया ले जाइए।
2: क्या भैया, पुराना क्या लाऊं भाई?
3: पुराना पेट्रोल लाओ, नया ले जाओ सर, बस यही है। और वो भी आप ही का निकला
2: है। क्या बात हुई, पुराना कहाँ से लाऊं
3: सर? पुराना जो आपने
2: पुराना वो तो जल के वो खत्म कर दिया हो
3: तो सर, जो आपने पुराना यूज किया होगा वो तो लाना पड़ेगा ना आपको।
2: धुआं में कहाँ से इकट्ठा करूँ?
3: पहले तो आप बड़े दांत फाड़ रहे थे जब मैंने आपसे कहा 20 लीटर फ्री पेट्रोल है, वाह वाह जी वाह वाह थैंक यू। अब मैं आपसे कह रहा हूँ
2: पेट्रोल मिल गया तो मुझे बड़ी अच्छी बात है।
3: अरे
2: क्या हो रहा?
3: अरे तो ये क्या
2: पुराना कहाँ से लाऊं?
3: पुराना आपको लाना पड़ेगा, ये भी मैं पुराना भी मैं। वैसे हर वक्त रोते रहते हैं पेट्रोल के पैसे बढ़ गए, हम फ्री दे रहे हैं तो ला के नहीं दे सकते पुराना। यार कमाल कर रहे हैं आप,
2: पेट्रोल फालतू का। अच्छा। पुराना लाओ, नया ले जाओ, ये ले जाओ।
4: अरे मेरी बात सर जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। अगर आप पुराना ले भी आए तो भी आपको 20 लीटर पेट्रोल फ्री नहीं मिलेगा, हाँ मुर्गा खाने को जरूर मिल सकता।
3: सर मजा आ गया आपसे बात करके, मतलब आपके गुस्से से डर गया मैं।
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

एनर्जी पे फिर से स्वागत। जो लोग बोलते हैं मुझे पार्टी पसंद नहीं है, उनको बस सही प्लेलिस्ट नहीं मिली अब तक, या फिर उनके दोस्त बहुत बोरिंग हैं, और दोनों पॉसिबिलिटीज इक्वली डेंजरस है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन विथ यू टुनाइट।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
4: भाई, इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसलिए मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन

अगर आपका वीकेंड प्लान सिर्फ खाना सोना और OTT था तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आज रात हम आपके लिविंग रूम को अनऑफिशियल नाइट क्लब डिक्लेयर करते हैं। DJ Richard Mirchi, Yontika, with you on Club Mirchi.

डीजे रिचर्ड की बीट्स और आपकी वीकेंड एनर्जी का कॉम्बो डेंजरस है। मजेदार मोमेंट्स के लिए फॉलो करो @DJRichardOfficial and Oyontika AYANTIKA और देखो असली पार्टी का सिलेबस।

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: बादशाह, आपने इतने गाने बनाए, इतने गाने कंपोज किए, सबसे पहला रैप आपने किस पे लिखा था?
4: जो मैथ्स के टीचर है उन पे रैप लिखा था। टीचर अच्छे नहीं थे, क्योंकि एक जैसे टीचर होते हैं वैसे वो थे नहीं, तो मैंने उन पे रैप लिखा जो काफी मशहूर हो गया। दैट वाज माय फर्स्ट। दिक्कत तब हुई जब वो रैप उन्होंने ही पढ़ लिया, उसके बाद मेरा एजुकेशन पे से विश्वास ही उठ गया।
3: 2+2=4, बादशाह गिव अस मोर, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड पोर्टल,
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi, it's hot.
5: Ladies and gentlemen.

Welcome back to Club Mirchi with DJ Richard and Mirchi Oyontika. This is the sound of the future. अगर आप डांस फ्लोर पे नहीं हो तो कम से कम इमेजिनेशन में तो हो, राइट? और अगर अभी भी सोफा पे बैठे हो तो कंग्रेचुलेशंस, आप ऑफिशियली फर्नीचर के साथ इमोशनली अटैच्ड हो चुके हो. गेट अप पीपल.

नहीं नहीं पीने के बाद सिर्फ डांस करो, बातें नहीं. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका एंड पीपल हु स्टिल वांट टू गिव लेक्चर्स आफ्टर ड्रिंक्स. ये है असली इमोशनल अत्याचार.

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

जी में वीकेंड का असली रूल सिंपल है, कैलोरीज काउंट मत करो, रिग्रेट्स मंडे को शेड्यूल करो, और जो लोग मैं सिर्फ एक गाना सुन के सो जाऊंगा बोलते हैं उन पे कभी भरोसा मत करो। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योर थिंग आउट विद यू टुनाइट ऑन क्लब मिर्ची।

ड्राइव स्मार्ट। अगर स्टीयरिंग व्हील हाथ में है तो फोन को वेकेशन पे भेज दो। एक नोटिफिकेशन किसी की डेस्टिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। ओके, क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोन पिकअप।

वॉल्यूम इतना मत बढ़ाओ कि मम्मी की आवाज और ट्रेन की हॉर्न दोनों म्यूट हो जाए. म्यूजिक एंजॉय करो, हियरिंग भी बचा के रखो. क्लब मिर्ची विद डीजे मैच्योर्ड एंड मिर्ची ऑयल ओंटेका.

वीकेंड और वाईफाई में एक सिमिलैरिटी है, दोनों जब स्ट्रॉन्ग होते हैं तो जिंदगी ऑटोमेटिकली बेटर लगती है. ऑल्सो विद क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका.

मैसेज का रिप्लाई देना जरूरी नहीं, कभी कभी सीन भी एक कंप्लीट पैराग्राफ होती है। डीजे विचरण मिर्ची और योतिका आपके साथ ऑन क्लब मिर्ची।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
4: भाई, इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
7: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
8: बार बार।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
9: 89.6
10: FM, मिर्ची वन। इट्स हॉट।
11: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो
12: ऑन अ राइड।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: श्रेयस तलपड़े आपकी सबसे पहली हिंदी फिल्म इकबाल थी, लेकिन क्या आपको याद है सबसे पहला गाना आपने कौन सा शूट किया था?
4: एक्चुअली टेलीविजन सीरियल का हमने एक टाइटल सॉन्ग शूट किया था, तो आई थिंक दैट प्रोबब्ली वाज द वन व्हिच वाज माय फर्स्ट सॉन्ग एज सच. मराठी गाना था वो, टाइटल था सीरियल का बेधुंद मनाची लहरी. इट वाज लाइक बेधुंद मनाची लहर लहरी चा होती लाटा लाटा होता कहर किनारा शोधती हजार वाटा.
3: श्रेयस, यू आर नॉट ओनली अ गुड एक्टर, यू आर अ फाइन सिंगर. मुझे लगता है आपको ये वाला ऑप्शन अब एक्सप्लोर करना शुरू कर लेना चाहिए. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड बोल्डाल.
2: बॉलीवुड, बॉलीवुड, बॉलीवुड बोल्डाल. ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
5: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो.

0: क्लब मिर्ची पे फिर से स्वागत। जो लोग बोलते हैं मुझे पार्टी पसंद नहीं है, उनको बस सही प्लेलिस्ट नहीं मिली अब तक, या फिर उनके दोस्त बहुत बोरिंग हैं, और दोनों पॉसिबिलिटीज इक्वली डेंजरस है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योर थिंग विद यू टुनाइट।
1: As for money, then get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

वेलकम बैक। अगर आपका वीकेंड प्लान सिर्फ खाना सोना और ओटीटी था तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आज रात हम आपके लिविंग रूम को अनऑफिशियल नाइट क्लब डिक्लेयर करते हैं। डीजे रिचर्ड मिर्ची ओयोंटिका विद

0: I'm telling y'all, they wanted to have coming with the new funk, funk, funk, funk, funk, funk, funk, funk, funk, funk. I like it.
1: रील्स बोरिंग लग रहा है तो थोड़ा डांस करो और हमें टैग भी करो डीजे रिचर्ड ऑफिशियल, कंटेंट भी बनेगा और कार्डियो भी। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन क्लब मिर्ची।

वापस आ गए हैं क्लब मिर्ची में। वीकेंड का असली रूल सिंपल है, कैलोरीज काउंट मत करो, रिग्रेट्स मंडे को शेड्यूल करो, और जो लोग मैं सिर्फ एक गाना सुन के सो जाऊंगा बोलते हैं उन पे कभी भरोसा मत करो। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन क्लब मिर्ची।

चट की बीट्स और आपकी वीकेंड एनर्जी का कॉम्बो डेंजरस है। मजेदार मोमेंट्स के लिए फॉलो करो @DJ Richard Official and Oyontika AYANTIKA और देखो असली

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories. Stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
4: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: दोस्ती कैसे सुले मैडम? नो सॉरी नो थैंक यू।
7: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
8: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
9: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।
12: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।
0: क्लब मिर्ची

वापस आ गए हैं क्लब मिर्ची में। वीकेंड का असली रूल सिंपल है, कैलोरीज काउंट मत करो, रिग्रेट्स मंडे को शेड्यूल करो, और जो लोग मैं सिर्फ एक गाना सुन के सो जाऊंगा बोलते हैं उन पे कभी भरोसा मत करो। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योर थिंग आउट विद यू टुनाइट ऑन क्लब मिर्ची।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: अनु मलिक, विच वॉज द फर्स्ट सॉन्ग जो आपने पब्लिक में अपनी बीवी के लिए गाया था?
4: आई रिमेम्बर द फर्स्ट सॉन्ग आई सैंग फॉर माई वाइफ वाज अ कंपोजिशन बाय सचिन देव बर्मन साहब एंड आई वाज इन कॉलेज. आई वाज सिलेक्टेड टू सिंग इन द टैलेंट कॉन्टेस्ट में था और वहां मैं गा रहा था एंड आई जस्ट कम टू नो हर. आई वाज फाइंडिंग आउट वेयर शी इज. तो किसी ने बोला तू कौन सा गाना गाने वाला, तो जहन में गाना याद आ गया. लुकिंग वेरी शी वेरी शी वेरी शी है. तू कहां ये बता इस नशीली रात में, माने ना मेरा दिल दीवाना, माने ना मेरा दिल दीवाना है.
3: Only imagine the kind of romantic you are. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड बोल डाल,
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल. Only on मिर्ची, इट्स हॉट.

सब मिर्ची पे स्वागत है दोबारा। लाइफ अगर आपको मिक्स सिग्नल्स दे रही है तो कोई बात नहीं, हम मिक्स ट्रैक्स दे रहे हैं और हमारे ट्रैक्स कम से कम कमिटमेंट तो निभाते हैं। दिस इज क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयो टिका।

सब मिर्ची पे स्वागत है दोबारा। लाइफ अगर आपको मिक्स्ड सिग्नल्स दे रही है तो कोई बात नहीं, हम मिक्स्ड ट्रैक्स दे रहे हैं और हमारे ट्रैक्स कम से कम कमिटमेंट तो निभाते हैं। दिस इज क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका।

ड्राइव स्मार्ट। अगर स्टीयरिंग व्हील हाथ में है तो फोन को वेकेशन पे भेज दो। एक नोटिफिकेशन किसी की डेस्टिनेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती। ओके, क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोंतिका।

कुछ लोग थेरेपी अफोर्ड करते हैं, कुछ लोग शॉपिंग करते हैं, और हम बेस ड्रॉप का वेट करते हैं। हर किसी का हीलिंग प्रोसेस अलग होता है बॉस, इसीलिए क्लब मिर्ची जा रही है विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयो देखा।

बस दोस्तों, आज की क्लब मिर्ची पार्टी यही रैप करते हैं। डांस मूव्स सेव कर लो, एनर्जी रिचार्ज कर लो और मंडे को याद दिलाओ कि वीकेंड अभी ऑफिशियली खत्म नहीं हुआ है, मेमोरीज बाकी है। मैं हूँ ओयोंतिका, मिलेंगे फिर अगले सेशन में। डीजे रिचर्ड भी होंगे आपके साथ, तब तक मस्त रहो, सेफ रहो और लाइफ को प्लेलिस्ट की तरह शफल मोड पे जियो। टाटा।

0: Mirchi, fresh maal.
1: High voltage beats और unstoppable groove के साथ सुनो माशुका.

गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।